FM 102.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2000।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 होने को है। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की है प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4वें चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर

0: हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

से कुछ ही देर बाद 6:10 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। इसमें आज का विचार रहेगा, सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। भक्ति संगीत वंदना आप सुन सकेंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर का समय रहेगा 6:45। भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान आप सुन सकेंगे 7:20 पर। कार्यक्रम नमस्कार चूरू का समय रहेगा 7:30। दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात आप सुन सकेंगे 8:00 और 8:15 पर समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। साढ़8:30 आप सुन सकेंगे झलकी, जी हाँ 8:45 पर समय रहेगा जयपुर केंद्र से रिले समाचार तरंग का। सुबह 9:00 आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

सुबह 9:10 पर आप सुन सकेंगे देशगान। फिल्मी कवालियों का कार्यक्रम महफिल होगा सुबह 9:15 पर। 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मुंबई केंद्र से सुबह 10:00। 11:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग रहेगा 12:00। 12:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे दोपहर 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन। दोपहर 2:00 आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले मिड डे न्यूज और दोपहर समाचारों का समय रहेगा 2:15। मेल बॉक्स, जी हाँ, ईमेल आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेल बॉक्स आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। सायंकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर से मुलाकात होगी शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी के साथ।

शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों के लिए। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे शाम 6:10।

मिनट पर। दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। 6:30 पर जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। 7:00 कार्यक्रम होगा खेती और गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। News@9 का समय रहेगा रात्रि 9:00। 9:15 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 पर समय रहेगा दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का। खेल जगत आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे रात्रि 11:00। दिल्ली केंद्र से रिले अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 11:05। कार्यक्रम विवरण में अभी हमने जाना आज के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं चिंतन। साथियों, चिंतन में आज का विचार है सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। साथियों, मनुष्य का नाम मनुष्य इसलिए है कि वो मन से चलता है और मन खुद मनुष्य के कब्जे में भी नहीं होता। जी हाँ, मनुष्य की अगर बात की जाए, मानव की अगर बात की जाए, तो वो चिंतनशील है और इतना चिंतनशील है कि उसका मन कहीं स्थिर नहीं रहता। मन की स्थिरता और अस्थिरता के बीच में झूलता ये जीवन हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। जीवन में छोटे निर्णय से लेके बड़े निर्णय तक हर निर्णय में मन का, मस्तिष्क का अहम योगदान होता ही है। लेकिन क्या कहें अगर मन ही कंफ्यूज हो जाए, उसे कुछ समझ ना आए, या समझ आ भी रहा हो तब भी किसी चीज की, किसी बात की, किसी प्लानिंग की श्योरिटी के लिए कहीं से कुछ पूछ लिया जाए तो कैसा रहे। बस यहीं से शुरू होती है सलाह की। जी हाँ, सलाह जब हम किसी से लेते हैं, सलाह जब हम किसी से मांगते हैं या हमें कोई देता है, ये वो विचार होता है जब हम चाहते हैं कि जिस बिंदु पर हम सोच रहे हैं उसी बिंदु पर कोई सोच के हमें बता दे कि आखिर सही रास्ता क्या है। बेशक हम जानते हैं जीवन के रास्ते, उस काम को करने के रास्ते, लेकिन अगर बात की जाए सलाह की तो वो इसलिए ली जाती है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, संशय होता है, वो खत्म हो जाए।

इसलिए कई बार जब मन उद्विग्न होता है, किसी मुद्दे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, या समझ में आ भी जाए तब भी काम की सफलता के लिए, 100% सफलता के लिए हम राय लेते हैं। जी हाँ, राय, जिसे सलाह या एडवाइस भी कहा जाता है। लेकिन क्या सलाह लेना कमजोरी है या बुद्धिमानी है? क्या कहेंगे आप? ये तो अपना अपना मत है। कोई इसे कमजोरी कह दे, कोई कहे बुद्धिमानी है, लेकिन सच्चाई यही है साथियों कि सलाह लेना कई बार बुद्धिमानी ही माना जाता है। कई बार कहा जाता है ना, सूझ से बूझ भली, यानी हम जो सोच रहे हैं वो अपने आप में एक आयाम के जरिए सोच रहे हैं।

बाहर साथियों ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि वो सब कुछ सही है, लेकिन जब परिणाम गलत आता है तब जाकर के हमें लगता है कि हम सोच रहे थे वो गलत था, हम जो चाह रहे थे वो गलत था, हम अंदर ही अंदर जो परिकल्पना कर रहे थे वो सब गलत थी। सच्चाई जब सामने आती है, परिणाम जब सामने आता है, तब जाकर के लगता है कि ये क्या, हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो आंखों के आगे जिसे कहते हैं पर्दा होना, वो इंसान के आंखों के आगे पर्दा भी ऐसा होता है कि कई बार वो सच देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। ऐसे में अगर एक राय मांग ली जाए, राय ले ली जाए, तो उससे हो सकता है कि संभावित असफलता या संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। ऐसे में होता यही है कि अगर हम दुर्घटना या असावधानी या असफलता से बच जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमने सलाह लेके अच्छा किया, राय मांग के अच्छा किया। और अगर हमें लगता है कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही काम हो गया, तो लगता है कि हाँ, हमने सलाह बिना बात ही ली, काम तो हम खुद ही कर लेते। लेकिन साथियों, परिणाम ही बताता है कि रास्ता सही था या गलत था। हम कोई भी रास्ता चुन लें, लेकिन परिणाम हमें कहता है कि ये रास्ता सही था या गलत था। रास्ता कोई भी व्यक्ति गलत नहीं चुनता, अपने मन मस्तिष्क से, अपने चित्त और बुद्धि से वो सही सोच के ही चलता है। कोई व्यक्ति जो रोड पे निकला है घर से, वो मरने के लिए नहीं निकलता, लेकिन अगर रास्ते में रोड एक्सीडेंट हो जाए तो परिणाम तो दुर्घटना ही है। ऐसा ही जीवन में होता है, हर व्यक्ति अच्छा सोच के ही करता है, लेकिन अच्छा ना हो ये भी संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में सूझ से बूझ भली पूछ लेना चाहिए, राय ले लेनी चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम वंदना FM 102.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आशा भोसले और शमशाद बेगम को अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं एक बार फिर से आशा भोसले को इस अगले गीत में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी केंद्र चूरू से आप सुन रहे हैं गीत बहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार FM 102.7 MHz पर आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान।

काग भूषंडी से श्री राम अवतार की कथा सुनकर पक्षी राज गरुड़ के मन का संशय मिट गया। नागपाश में एक साधारण मनुष्य की भांति बंध जाने के कारण गरुड़ को यह संदेह हुआ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो मायापाश में किस प्रकार बंध सकता है। लेकिन इस संदेह रूपी मोह के कारण ही गरुड़ को काग भूषंडी का सत्संग प्राप्त हुआ। गरुड़ के उद्गार सुनकर काग भूषंडी ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। प्रभु ने आपको यहां भेजकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे बढ़ाई दी है। आपने मोह होने की बात कही, सो हे नाथ, जब नारद स्वयं शंभु और ब्रह्मा भी इससे नहीं बच सके तो सामान्य प्राणी की क्या बिसात। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसे काम क्रोध मोह ने नहीं नचाया। परम ज्ञानी, योद्धा, कवि, विद्वान

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

साथियों उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल तो बातें कर रहे हैं मन के दिल की, लेकिन हम बात अगर करें फिजिकल यानी कि शारीरिक दिल की, जो हमारे अंदर धड़क रहा है, जो खून पंप कर रहा है, धमनियों में रक्त का प्रवाह बना रहा है, उस दिल की, तो उसके लिए ख्याल रखने के लिए बहुत जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी हम करते रहें। एक जगह लगातार बैठे रहना और अपने आप को आलसी बना लेना उस दिल के लिए खतरनाक है। और बात अगर करें चूरू की, तो चूरू में इन दिनों सूर्य देवता मेहरबान है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, और उस गर्मी में भी अगर हम ख्याल रखेंगे अपने आप का, अपने शरीर का और स्वास्थ्य का, तो न सिर्फ हम सही रहेंगे, हमारा दिल भी सही रहेगा, और अगर दिल सही रहेगा तो फिर सब कुछ ही सही रहेगा।

साथ ही नींद और चैन अगर ना आ रहा है तो ये एक लक्षण ये भी हो सकता है कि हम बीमार हैं। बात मजाक की नहीं है, बात ऐसी है कि जो गर्मी पड़ रही है, जो धूप की तेजी है, जो तलखी है, उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी क्या बात रही साथियों कि सिर्फ खुद का ही ख्याल रखें। अगर आदमी खुद के लिए ही सोचने लगे तो फिर इंसान इंसान है कहाँ, यानी मनुष्य मानव है कहाँ। मानव तो वो है जो सबके हित की बात सोचे। जब इतनी गर्मी पड़ रही है, चोरू का इलाका तप रहा है, तो हम सिर्फ खुद का ख्याल रखें, इतने तो स्वार्थी हम भी नहीं हैं। जी हाँ, अपने आसपास के पेड़ पौधे भी पानी के लिए उतने ही तरस रहे हैं जितने हम तरस रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था अगर हम कर दें तो क्या चला जाएगा। सोचिए, एक गिलास पानी में हम एक बार तृप्त नहीं होते, लेकिन एक गिलास पानी में अगर हम पंछियों को गिने तो उसमें सैकड़ों पंछी पानी पी सकते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रयास करें तो काफी हद तक कुछ या ढेर सारे पंछियों के लिए एक पानी का इंतजाम कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी का एक जो प्रवाह अगर हम बनाए रखें, क्योंकि गर्मियों में बहुत हद तक ये चांस है कि पौधे सूख जाते हैं, जल जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था अगर हम करें तो साथियों ये हमारे लिए ही बेहतर होगा। पौधा अगर है तो उसके लिए पानी और छाया की व्यवस्था अगर हम कर सकें तो बहुत अच्छा है। पेड़ है तो पानी की व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए, क्योंकि पेड़ तो अपने आप में इतना सक्षम हो जाता है कि धूप झेल लेता है, लेकिन पानी की व्यवस्था तो कर देनी ही चाहिए। इसलिए साथियों सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं, अपने आसपास का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब हम इनसे लेते हैं, प्रकृति के साधनों से लेते हैं, तो हमें देना भी आना चाहिए। देना ही मनुष्य की मनुष्यता का एक प्रतीक है, और इसलिए हम यही कहेंगे कि सिर्फ खुद का ख्याल नहीं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण का, अपने आसपास के पेड़ पौधों का और अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, क्या हो अगर जो अनुपात है वो जीवन में बिगड़ जाए, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, पैसे का हो, मन की खुशी का हो, कैसा भी हो, वो अनुपात अगर बिगड़ गया तो फिर बिगड़ ही गया। बात करें सिर्फ अधिकारों की तो अधिकार भी अकेले नहीं आते। अधिकार जब ही मिलता है जब हम कुछ ड्यूटीज पूरी करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। जब हम कर्तव्य निभाते हैं तभी जाकर के अधिकार मिलते हैं। लेकिन हम ये खुद में भी पाते हैं और अपने आसपास हर जगह ये देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है। है अधिकारों से इनकार कहाँ, लेकिन कर्तव्य कौन ध्यान रख रहा है? क्या हम अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रख रहे हैं? जितनी प्राथमिकता हम अपने अधिकारों को देते हैं, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, क्या हम अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं? उसी प्राथमिकता से ये सवाल अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो अनुपात इस समय बिगड़ा हुआ है, सिर्फ अधिकारों की मांग हम करते हैं, हमारे रिश्तों में हो, घर में हो, समाज में हो या देश में हो, सिर्फ और सिर्फ अधिकार पर हमारा फोकस है, जो हमारे कर्तव्य है उस पर हम ध्यान नहीं देते, बच के निकल जाते हैं। एक देश और समाज अगर उन्नत बनाना है तो फिर कर्तव्यों को भी प्राथमिकता देनी होगी। दूसरा दे ना दे, लेकिन हमें खुद को तो देनी ही होगी। हर व्यक्ति खुद में सुधार कर ले तो बस सारा समाज ही सुधर जाएगा। इसलिए सिर्फ अधिकारों की प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता कर्तव्यों

आशा भोसले और अभिजीत की आवाज में ये गाना जो आप सुन रहे हैं, इसे लिखा देव कोहली ने और संगीत है जतिन ललित का। साथियों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कभी पुराने लगते ही नहीं। ये गाना चाहे 30 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना, जब भी आप सुनेंगे एक अजीब सी फ्रेशनेस महसूस होती है। गानों की अपनी एक भाषा होती है, भावनाओं की। कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो हमें दुख की ओर ले जाती हैं, कुछ उमंग की ओर ले जाती हैं। गाने अपने आप में जीवन है। जी हाँ, वो जीवन जो हमें एक गाने में पूरा जीवन जिंदा कर देते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, हम रहते हैं राजस्थान में और राजस्थान की धरती पर अपना जीवन जीते हैं। इस बार जब हम कभी पानी वेस्ट करें तो वो पणिहारी की एक तस्वीर याद कर लें, देख लें दीवारों पर टंगी हुई, जो फैशन का एक मुकाम तो बन चुकी है, जिसमें महिलाएं अपने सर पे मटके ले जा रही हैं जिसमें वो पानी ले जा रही हैं। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि पानी की सीमितता जब थी तो पानी की कीमत बहुत थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि पानी जिस लेवल पे वेस्ट किया जाता है उस लेवल पे पानी हमारे पास है नहीं। पानी बेशकीमती है, पानी की कोई कीमत नहीं है, और अगर पानी की कीमत अगर हमने ना समझी तो फिर ये अपने आप में होगी एक ना समझी। जी हाँ, पानी को बचाएं। बारिश आए उसके बाद तो लगता है कि हाँ पानी है, लेकिन फिलहाल इस गर्मी में न केवल हमारे लिए बल्कि पेड़ पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, पानी बचाएं, उसका यूज करें, मिसयूज नहीं।

0: FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, आपसे कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल है।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA

0: वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की

0: ghost on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के

0: 여태기마? 예, 여태기마.
1: 아니, 뭐야? 아? 이 스트라 곰숭이 말이요.
2: 아, 그야?
1: 아니, 로그리요.
2: 왜 그래? 이 चिट्ठी पढ़ लो
1: किसकी चिट्ठी है ये
2: तुम्हारी लाडली बेटी की
1: ज्योति की चिट्ठी देखो पूछ डैडी मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ रही हूँ शाम के पास जा रही हूँ हम विवाह कर रहे हैं चाहती थी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता मगर माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं खैर अब जा रही हूँ आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को भुलाकर क्षमा करें आपकी बेटी ज्योति
2: अब तो आ गया ना विश्वास मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे ये लड़का एक आंख नहीं पाता ज्योति के साथ उसका मेल मिलाप ठीक नहीं अगर तुम हमेशा उसके गुणगान करते रहे आज उस चित्रकार ने हमारे मुंह पर काले पोती है काले खाम
1: शाम को इतना ओछा आदमी नहीं समझता था अगर वो मुझसे मेरी ज्योति का हाथ मांगता तो मैं हंसी खुशी ज्योति का विवाह उसके साथ कर देता
2: मैं तो उस लिठाले के साथ अपनी फूलसी बच्ची का विवाह कभी ना करती उसके पास रखा क्या है न पहनने का ढंग न बोलने की तमीज
1: नहीं ज्योति की मैं ऐसी बात नहीं है मैं शाम के बारे में सब कुछ जानता हूँ उसके जीवन का उद्देश्य है सादा जीवन उच्च विचार वो अपने बाप के पैसे को छूना तक नहीं चाहता अरे अपने पिता से उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शों की है
2: वो इस तरह छुपकर खत लेकर क्यों गई पूछती न सही तुमसे तो अपने मन की बात कह सकती थी ओ तू आ गई माँ बाप के मुंह पर तारीख लगाकर
1: कौन ज्योति इधर आ बेटी इधर आ
2: डैडी डैडी घर में छोटी तुझे शर्म नहीं आई इस घर की इज्जत नीलाम करने गई थी माँ अरे वो लफंगा जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ तेरा क्या होगा
1: तू चुप भी रहेगी गलती इंसान से होती है वैसे ज्योति अब बच्ची नहीं है समझदार है पढ़ी लिखी है वो अपना बुरा भला खुद सोच सकती है
2: जो बेटी माँ को अपना दुश्मन समझे ऐसी लड़के के होने से तो बे औलाद भली थी मम्मी अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया ये खाओ ये ना खाओ ये ना करो यू उठो यू बैठो जैसे मैं बच्ची हूँ जैसे मुझे जीने का शौर ही नहीं हो
3: देखो तो छोकरे की जबान कैंची की तरह चल रही है कैंची की तरह शौर इतना है तो घर की इज्जत नीलाम करने क्यों गई थी
2: घर की इज्जत क्या होती मम्मी माँ और बाप 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहे बेटी की क्या इच्छाएं हैं तमन्नाएं हैं ये जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं तो बेटी क्या करे घर की चार दीवारी से अपना सर फोड़े दिल की बात दीवारों से करे
3: नहीं नहीं घर छोड़कर उस निकम्मे के साथ भाग जाए माँ बाप के मुंह पर काले पोते है
1: ज्योति की माँ चुप भी कर ज्योति से बात करने दो मुझे जाओ मेरे लिए एक चाय का कप ले
3: हाँ हाँ मैं तुम दोनों के बीच से चली जाती
1: हूँ हाँ ज्योति बेटी मुझे बता तू क्या चाहती है मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ
2: कहना क्या है मेरा फैसला तो आप जानते हैं
1: मैं जानता हूँ बेटी तू शाम से विवाह करना चाहती है ना
2: पापा
1: पर बेटी इस संबंध के नतीजे के बारे में भी तूने सोचा होगा
2: नतीजों से आपका मतलब मैं समझी नहीं पापा
1: यही कि विवाह के बाद एक घर की जरूरत होती है और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम क्या तू शाम की तरह सादा जीवन जी सकेगी
2: मैंने शाम को करीब से देखा है पापा उसे समझा है मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी आपने कभी शाम को समझने की कोशिश ही नहीं की पापा शाम की तरह दुनिया में कितने लोग हैं जो औरों की सोचते हैं वो हर शाम गरीबों की बस्ती में जाके उनके दुख दर्द सुनता है वो उनके गम आंसुओं पीड़ा वेदना में हिस्सा बटाता है उनके बच्चों को पढ़ाता है उनके लिए खुशियां जुटाता है

0: लिए तो सब जीते हैं पापा, औरों के लिए जीने वाले मुश्किल से मिलते हैं।
1: शाम को तो इतना जानती है, फिर भी तूने बुजदिलों की तरह भागने की जल्दबाजी क्यों की?
0: मैं डरती थी पापा, मैं डरती थी कि...
1: डरती थी? किससे?
0: मुझे मम्मी का डर था, मुझे डर था वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी।
1: हाँ, वो जल्दी से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, वो पुराने विचारों की एक सीधी सादी औरत है, लेकिन वो भी इंसान है, प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती। आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, तेरा सुख ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है।
0: पापा, उनकी बातें सुनने के बाद भी आप कहते हैं कि वो मान जाती? शाम के लिए उनके दिल में जो नफरत है पापा, आप...
1: शाम के लिए उसके दिल में नफरत नहीं, ईर्ष्या है। उसकी लाडली बेटी को कोई उससे भी ज्यादा प्यार करे, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। फिर तूने शाम के बारे में अपनी माँ को कभी हमराज भी नहीं बनाया, इसीलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी इकलौती बेटी को उससे दूर कर रहा है। वो अनजाने में शाम से चिढ़ गई। अगर तू अपनी माँ से शाम को मांगती तो वो तेरी खुशी के लिए खुश शाम की खुशामद करती। बेटा, वो गर्म मिजाज की जरूर है, पर तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तूने उसे समझने में गलती की है बेटा।
0: हो सकता है पापा, हो सकता है मैंने ही मम्मी को समझने में गलती की हो।
1: तूने मुझे भी गलत समझा है।
0: पापा, ये आप क्या कहती हैं?
1: इस तरह घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे इस संबंध में कहा होता।
0: मैंने कहा ना, मैं डरती थी पापा, मैंने सोचा कहीं माँ के दबाव में आके आप इनकार कर बैठे तो।
1: तू बिल्कुल भोली है, तूने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पहचाना। और बेटी, मैं तो कहूंगा कि तूने शाम को भी गलत समझा है।
0: पापा,
1: तू जब घर छोड़कर शाम के पास गई तो फिर लौट क्यों आई? तुझे शाम ने वापस भेज दिया ना?
0: हाँ, मुझे शाम ने वापस भेज दिया। उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था।
1: उसने शादी के लिए इनकार तो नहीं किया?
0: नहीं नहीं पापा, उसने कहा ज्योति मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन इस तरह छुप कर घर से भाग कर नहीं, तुम्हारे माँ बाप की अनुमति लेकर। उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमति दे देंगे। उसने मुझे वापस भेज दिया। पापा, वो आ रहा है आपके पास आप लोगों की अनुमति लेने।
1: ज्योति, मैं जानता था कि श्याम एक आदर्श लड़का है, वो बड़ों का आदर करना जानता है। आज अपनी मर्यादा की वजह से वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया।
0: पापा,
2: अरे श्याम, आओ बेटा आओ।
3: पापा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ।
1: क्षमा? कैसी क्षमा?
3: अनजाने में ज्योति ने जो गलत कदम उठाया उससे आपको कितना कष्ट पहुंचा होगा ये मैं समझ सकता हूँ।
1: तुमने मेरे घर की इज्जत बचा ली बेटे, वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कितनी बदनामी होती है हमारी।
3: मैं जानता हूँ पापा, इसलिए आज मैं आपका आशीर्वाद देने आया हूँ।
1: मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। पर श्याम
3: जी,
1: कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ।
3: कहिए पापा।
1: क्या तुम समझते हो ज्योति एक अच्छी पत्नी साबित होगी?
3: हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा।
1: लेकिन बेटा, सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं कटता।
3: जी, मैं समझा नहीं।
1: ज्योति एक नासमझ लड़की है, घर गृहस्थ कैसे चलाया जाता है इसे उसका कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि उसे खाना पकाने, घर के कामकाज का भी शौर नहीं है।
4: हाँ हाँ, वो जाहिल है, गवार है, क्योंकि उसकी माँ एक फूहड़ औरत है, उसने अपनी इकलौती बेटी को कुछ नहीं सिखाया, यही कहना चाहते हो ना?
1: अरे ज्योति की माँ, ये
4: मेरी ज्योति हजारों में एक है, हजारों में, क्या नहीं आता उसे? हाँ, बस तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है और अब कुछ दिनों से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी।
0: माँ छोड़ मुझे।
4: क्षमा, मैं तेरी कौन होती हूँ? मैं तो तेरी दुश्मन हूँ।
3: माँ जी, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे की दुश्मन होती
4: है? तू मत बोल मुझसे, तूने ही मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया, तेरे ही कारण वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है, तेरे लिए वो आज मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे अपनी माँ को छोड़कर जा रही है।
3: माँ जी, ये इसकी नादानी थी, इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया। मुझे ज्योति से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, माँ का प्यार। सच कहता हूँ माँ जी, साल दो साल का था मैं जब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मुझे तो

0: सूरत भी याद नहीं। माँ के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा मैं।
1: सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है, फिर तो?
0: माँ जी, जिस बच्चे की माँ नहीं होती ना, उसका बाप भी सौतेला हो जाता है। उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा। उनके लिए तो पैसा ही औलाद है और पैसा ही भगवान।
1: पर पैसे के बिना गृहस्थ चल भी तो नहीं सकता, यह भी तो एक सच्चाई है। इस तरह से आंखों को बंद नहीं करके बैठा जा सकता है। तुम्हारे पास है क्या?
0: मेरे पास है माँ जी, आप जैसी माँ का आशीर्वाद। मेरी पूंजी है दया, करुणा।
1: ज्योति को बड़े नाजू से पाला है मैंने।
0: माँ जी, सीता भी तो राजा जनक की बेटी थी।
2: और फिर श्याम उसे ब्याह कर वनवास नहीं ले जा रहा है। वो सादा जीवन बिताना चाहता है और सादगी कोई गुनाह नहीं है।
1: मैंने ज्योति के विवाह को लेकर कितने सपने बुने थे।
2: ज्योति की माँ, अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे।
0: काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते।
2: तुम्हारे डैडी को मैं समझाऊंगा। मैं लड़की वाला हूँ भाई।
0: नहीं, वो आपके साथ सौदेबाजी करेंगे, हजारों रुपए दहेज में मांगेंगे। उन्हें जिंदगी में केवल पैसा चाहिए, पैसा। पैसे के लिए वो मुझे भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
2: मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हारे पिताजी जितना दहेज मांगेंगे दूंगा।
0: नहीं पापा, मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें विवाह का निमंत्रण भेजूंगा। चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद पा सकूं।
2: हम शादी धूमधाम से करेंगे।
0: नहीं पापा, नहीं, मैं आपको कोई फजूल खर्ची नहीं करने दूंगा।
2: अच्छा चलो, एक बढ़िया सी पार्टी कर देंगे। क्यों ज्योति की माँ?
1: मैं तो दुश्मन हूँ इनकी, मुझसे क्या पूछते हो?
0: अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगा माँ जी। माँ को नाराज करके मैं कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहता।
1: लेकिन मैं फकीरों की तरह रूखी सुखी शादी नहीं करूंगी। हाँ, कम से कम बारातियों को मीठा नमकीन तो देना ही होगा।
0: पर जानती है माँ जी, मेरी बारात में कौन लोग आएंगे? मेरी बारात में होंगे बस्ती के गरीब लोग, अनाथ बच्चे। मेरी रिश्तेदारी तो उन्हीं लोगों से है मां जी।
2: लेकिन श्याम,
1: आपको बीच में बोलने की बुरी आदत है, चुप रहिए।
2: पर ज्योति की मां, शादी में रिश्तेदारों को?
1: रिश्ते खून के नहीं, प्यार के होते हैं। आज ये बात मुझे श्याम बेटे ने अच्छी तरह समझा दी। मेरी अपनी जाई ने मुझे नहीं समझा, मगर ये इसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, उससे तो मेरा दिल भर आया।
2: अच्छा ही हुआ, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
1: आप चुप रहिए, दामाद और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं?
2: जी मैं इस दामाद का ससुर और इस सास का पति और इस घर का मालिक।
1: मालिक? वो किसकी इजाजत से?
2: इस घर की मालकिन, यानी तुम्हारी इजाजत से।

0: अभी आप सुन रहे थे रिश्ते प्यार के झलकी कार्यक्रम में आप ही आपने सुना, लेखक थे विष्णु भाटिया।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान।
0: FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे जयपुर केंद्र से रिले समाचार तरंग और उसके बाद हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा, देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान। मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून को होगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान सरकार की हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहे। नागौर की मेड़ता में राव दूदा की प्रतिमा अनावरण समारोह में उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।
1: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहाँ के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।
0: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे चार जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता

0: काम कर रहे हैं।
1: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT के माध्यम से होगी।
2: CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में NTA को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
3: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लग लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
1: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की

0: अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिससे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो, तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है, देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
3: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और

0: तेजनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
1: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्य

0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
1: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ में।
0: जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों

0: को सुरक्षित रास्तों की जानकारी, सत्यापित गाइडों की सूची और आपातकालीन मदद मिल सकेगी।
1: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर उपलब्ध हैं।
0: यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
2: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
3: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष लगभग 520 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक हुई स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती है और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: समाचार तरंग में बस इतना ही। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे रामनाथ मीना।
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। कुछ ही देर में यानी 9 बजे आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 260,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे, सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए विचार विमर्श हुआ। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री रहा, जिसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के साथ संबोधित किया। प्रदेश में लोगों को जल संचय और मकानों तथा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे जल संग्रहण कर बरसात के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों और प्रशासन की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। प्रदेश में 260,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन और दलहन के तहत ये राशि मंजूर की गई है। योजना के तहत राज्य में 70,000 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शनों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 51,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ये राशि डीबीटी की जा चुकी है। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
1: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम पुस्तला का रहने वाला हूं और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरे 4 एकड़ जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 112,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिस चीज का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
2: किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरवान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूँ और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
0: पाली जिले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से आज से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है।

0: जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि ये अभियान 25 मई तक चलेगा। जिले की दूरदराज की ढाणियों और गांवों में आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से 21 से 23 मई तक जनसुनवाई होगी। वहीं संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। कल 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आज से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है।
1: पिछले एक सप्ताह से हीट वेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं पे नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। विशेष रूप से मई के महीने में जो थार रेगिस्तान क्षेत्र और आसपास का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें जो हवाओं का पैटर्न है, खासकर जो सतह की हवाएं हैं और ऊपरी वातावरण की है, इसमें एक एंटीसाइक्लोनिक चक्रवाती, यूं कह सकते हैं प्रति चक्रवाती तंत्र बनता है और इसी के असर से सरफेस पर हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल पिछले एक वीक से ये एक टिपिकल हीट वेव का स्पेल जारी है और अभी भी अगले एक सप्ताह 10 दिनों तक ये हीट वेव का स्पेल खासकर डेजर्ट क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है, इसमें जारी रहने की संभावना है।
0: चूरू जिले के मानपुरा में एक खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पनियाला के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर अम्बाला हाईवे पर एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में देशी विदेशी सैलानियों और आमजन को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाएगा। संग्रहालय दिवस के अवसर पर पाली में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में भी थार हेरिटेज म्यूजियम में विरासत संरक्षण पर विचार गोष्ठी रखी गई है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज विशेष रेलगाड़ी चलेगी। ये विशेष रेल सेवा एक दिन के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर करीब 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसका मंडोर, ओसिया और फलौदी सहित सभी निर्धारित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सवाई माधोपुर में नई वंदे भारत ट्रेन की गति का परीक्षण पूरा किया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलगाड़ी को कोटा मंडल के विभिन्न मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मायड भाषा राजस्थान
3: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 102.7 MHz पर, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल। फिल्मी कव्वालियों की पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं दीवार फिल्म से ये कव्वाली।

आशा भोसले और उषा मंगेशकर को अभी आपने सुना इस कव्वाली में। ये कव्वाली हमने ली थी फिल्म दीवार से। आइए सुनते हैं अगली कव्वाली जिसको हमने लिया है फिल्म धर्म से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह कार्यक्रम होता है किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

चित्र लोक में। आज के इस कार्यक्रम के हमारे कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती।

गौरांग चक्रवर्ती। जी हाँ, बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती और जिन्हें हम सभी जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के नाम से। 16 जून 1950 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती को भला कौन नहीं जानता। अपने जमाने के सुपर डुपर स्टार रहे, एक से बढ़कर एक फिल्में की और उनके ऊपर फिल्माए हुए कुछ गीत तो बड़े ही

0: साथियों, हर इंसान का एक दौर होता है, वो दौर जिसमें शख्स को मिलती है कुछ ऐसी उम्मीदें और उनका परिणाम जो जाकर के भविष्य का इतिहास बनता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों की जो शुरुआत की थी उसमें उन्हें एक डांसर के तौर पे पहचाना गया, ऐसी भूमिका जो उन्हें डांसर साबित कर गई। डांसर से एक जिंदा दिल और संजीदा किरदार के रूप में, संजीदा कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत सी फिल्में की और उन्हीं फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी।
1: मेरी जान मुझको बहुत

रसायन विज्ञान से बीएससी स्नातक डिग्री धारी जो मिथुन चक्रवर्ती थे या मिथुन चक्रवर्ती के करियर की अगर

बात करें तो साल 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगाया से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्में जैसे दो अनजाने, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, इन फिल्मों में सहयोग की भूमिका निभाई, सहयोगी कलाकार की भूमिका निभाई, लेकिन इससे कुछ ज्यादा सम्मान नहीं मिला। बाद में साल 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली फिल्म जासूसी फिल्म जो उन्होंने जिसमें अपना किरदार निभाया, जिसका नाम सुरक्षा रहा, और 1980 के दशक की शुरुआत में जो फिल्म थी हम पांच वारदात, ऐसी फिल्मों में इन्होंने भूमिका अदा करी। लेकिन सबसे जो चर्चा में रही वो फिल्म रही डिस्को डांसर, जो साल 1982 में आई।

मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मृगया, ताहिदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

जब दौर की बात चलेगी तो मिथुन दा के दौर को याद किया जाएगा, उनके फिल्मों को, उनके अदाकारी को और स्पेशली उनके डांस को।

0: मिथुन दा के एक और गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम चित्रलोक में। इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त कनिष्क को। नमस्कार।
1: परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना।
0: FM 100.7 MHz
2: आपका जीवन संगीत।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: धारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
2: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, क्योंकि तो जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं, जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
2: हाँ,
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
2: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई, आइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी,
0: सारी फिल्में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सेटिंग में स्टोरी सेटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ, कोई ऐसा वो। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूँ तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में

0: गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी,
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लें तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है, यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने सुनो, उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया। विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी।
1: हाँ हाँ।
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में, मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ,
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है फलां क्यों नहीं, मेरा रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया।

0: उन्होंने कहा मैं ही करूँ।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था।
1: पहली फिल्म थी आपकी।
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो ने जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था। बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह को बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है यश जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसकी म्यूजिक के बारे में बताइए,
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यजी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली
1: भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप।

0: को अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसे से कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट यानी मैंने उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर, बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा
0: करने के लिए, तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था गड़बड़, वो कुछ हुआ था ऐसा। मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था, तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो ज्योम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर, एक एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बैल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे का शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर, मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली, वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बसेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए।
0: यस,
1: ये था। रमेश बैल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: बाबा
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का, वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड मेमोरी करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
0: ये कौन है?
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
0: ओके
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी।

0: छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्क स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ, तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर। एल्बम वेल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो लंच पे खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, है अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे, हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है वो ऋषि, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तुम उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके?
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहाँ पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ
1: हो
0: गई। और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ आज जी की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था ऐसा कुछ था। मैं रमेश

मैं को बताया, कहता है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की, वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार मेरे, तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आके रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या क्या। घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता, ऐसे नहीं ट्रायल रख सकता हूँ, लेकिन तू भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर बोर्ड सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर, वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो 7 वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, ओए क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं बियर पिएगा। वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ट्रेव्यू करके आया ठंडी में काम रहा हूँ, साले ये मर जाएगा कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन एक पी? नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बीयर का गिलास दे दिया था उसने, फिर मैं

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों।

0: आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

चलता हूँ आपसे कुछ देर बाद 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, दिन में 12 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप तक पहुँचाएंगे, 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर, कलाकार हैं

0: आपके साथ ही।
1: 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन। आज घर आंगन की चर्चा का विषय है संयुक्त और एकांकी परिवार, फायदे व नुकसान। चर्चा होगी बच्चों को भी सिखाएं मितव्ययता। व्यंजन विधि के तहत आपको रसोई के टिप्स

श्रोताओं, आज दिन में 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स। इस कार्यक्रम में श्रोता हमें आज दिन में 1 बजे तक अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। श्रोताओं से अनुरोध है कि आप एक बार में एक ही ईमेल हमें भेजें।

हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे युववाणी के साथ। आज की चर्चा का विषय है समाज में बदलाव लाने वाले युवाओं की कहानी। एक और चर्चा होगी जो अलग सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। खेती और गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। चर्चा होगी इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्यों पर, प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर और साथ ही मूक प्राणियों हेतु जल प्रबंधन विषय पर भी बातचीत होगी। रात 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता।

रात 9:15 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत, 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम रिले करेंगे, 10 बजे आकाशवाणी जयपुर से खेल जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा, 10:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चोरू का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्तपट संगीत।

दिल तो बच्चा है जी। आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत, और नीचे आप सुनिए चित्रपट संगीत का अगला गीत। फिल्म का नाम है दिल मांगे मोर।

श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना साधना सरगम की आवाज में। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कुंज बिहारी के साथ।

आकाशवाणी के चोरू केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। जब सुनिए अनादर फुटबॉल कुमार सानू की आवाज, फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

देखा प्यार तुम्हारा, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज। लीजिए अब सुनिए अली परवेज मेहंदी और श्वेता पंडित की आवाज में यमला पगला दीवाना फिल्म का गाना।

0: याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी किशोर कुमार की आवाज में।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

ग्लेन जॉन की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म वो लम्हे से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत और अब सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पारंपरिक कपड़े आदिवासी गहने पहनी।
1: तुलसी गौडा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
2: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
3: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौडा।
0: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौडा
4: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।

0: शांति, तुलसी कौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
1: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: तीन नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधे

0: पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य

0: को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
1: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
1: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे।

मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।

0: करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं

0: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है।

0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
1: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी

0: बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई माथरी वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रख

0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है।

0: पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी greatest things are always simplest। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

श्रोता भी सुन रही थी एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। 12:30 हुए हैं। डीजे पर प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं शकुंतला भाटी।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: श्रोता भी सुन रही थी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शकुंतला भाटी और उनके साथियों की आवाजों में लोक रचनाएं। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन का एक बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित
1: अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी में प्रादेशिक

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की कवायद में ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा का उद्देश्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये स्वीडन का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए समारोह में उनके साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी ने 14 मई को श्री सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। राज्य विधानसभा की 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों की लॉन्चिंग की। साथ ही विधानसभा के चारों द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस नवाचार की पहल की। गौरतलब है कि डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दीर्घाओं, डिजिटल संग्रहालय सहित अन्य नवाचारों से राजस्थान विधानसभा को देश में अनूठी पहचान मिली है। हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथून कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
1: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून के पीटलूम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहां पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: प्रदेश में दिन के साथ अब रातें भी काफी तपने लगी है। कल 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कुछ अन्य शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। उधर चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रात का पारा 33.2 डिग्री पहुंचने से गर्म रातों का दौर शुरू हो गया। कोटा में भी रात का पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। राजधानी जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स 5वें स्थान पर है। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में खेले गए मैच में कल 194 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम है घर आंगन, कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ मैं भावना। तो कार्यक्रम में अपनी बहना रो करा मोकलो मोकलो स्वागत और करा बा सबसु राम राम। बहनों हमारे ई कार्यक्रम के माध्यम से मैं थार से बातें करा हाँ और बहुत सारी जी की जानकारियां हैं वे भी देवा, साथ ही साथ लोक गीत सुनार थारो मनोरंजन भी करावा हाँ। तो आज भी मैं थारे लिए बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं, जी कि आज की जानकारी है संयुक्त और एकांकी परिवार का फायदा और नुकसान के हुए है कि आप जब संयुक्त परिवार में रहे वहां तो आपने लिए के फायदो है और अगर आप एकल परिवार में रहे वहां तो भी की के कमी और के भी का गुण है। या कि आप बात कर सा भी के साथ साथ बात कर सा एक बहुत ही प्यारा रिश्ते के बारे में, भाभी और ननद को रिश्तो बीक मायने जिद मधुरता बनेड़ी रवे तो घर को जो माहौल है वो खुशनुमा और आनंद से भरेड़ो रवे। साथ ही साथ बात कर सा आपने बच्चा में भी आपा आदत डाला मितवेता की, यानी कि बचत करन की, ताकि बांको भविष्य है वो सुरक्षित रवे।

ज्यादा खर्च नहीं करके आपके लिए 2 रुपया बचार भविष्य में बैंक को उपयोग है वो कर सके है। तो ऐ सारी जानकारियां भी थाने ई कार्यक्रम में देसा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करा एक मीठे से लोकगीत रे साथ है।

निर्णय लेने की बात हुए तो हर बात में सबरी सहमति जरूरी हुए। जिसू फैसलो लेवण में देरी हो सके है, लेकिन अगर फैसलो अपना बड़ा बुजुर्ग ले रहे हैं तो बन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुए है और वह वो बहुत जो अनुभव प्राप्त करके उम्र तक आया है तो वह फैसलो ले रहे हैं तो बिम आपा अपना मत भी दे सका हाँ और आपसी मेल जोल से अपना निर्णय ले के कोई भी जरूरी काम है भी ने कर सका हाँ। अब बात करा के जो एकल परिवार है एकाकी परिवार है बिका के फायदा हुआ है तो एक तो देखो पूरी स्वतंत्रता मिले टाबर और परिवार अपनी मर्जी रे हिसाब से जी सके है बिक साथ साथ खर्चो कम हो जिसु भविष्य के लिए बचत करनो आसान हो जावे और तीसरी बात अगर आप फायदे की करा तो घर रा मुखिया सीधी रणनीति बना सके है यानी कि बिक मैं कई सारी लोग कई सारे लोगों को निर्णय नहीं हो कि घर में जो पति पत्नी है वह आपसे निर्णय से है, कोई भी कार्य है वो कर सके है। और देखो ई जो एकल परिवार आप बात कराई का कि परिवार की तो बिका नुकसान भी बहुत है दुख सुख बिकर टाइम में कोई बड़ो आदमी को नहीं हुए जिको सु मानसिक तनाव बढ़ सके है और आपा आजकल देखा हाँ कि हर परिवार में जो इंसान है वह अवसाद का शिकार हो रहा है इको कारण ही है एकाकी यानी कि अकेलोपन अकेलोपन इंसान घर कर जावे तो बिकर मानसिक तनाव रहन लाग जावे और वो कोई भी कार्य है वो सही तरीके से कौन कर सके बिक साथ साथ टाबरा ने दादी दादा रो चाचा चाची ताई ताई को अगर प्रेम नहीं मिले तो और मार्गदर्शन नहीं मिले तो संस्कार की कमी भी आपा ने देखने ने मिले है और इको सबसे बड़ो कारण ही है एकल परिवार जटे माँ बाप दोनों नौकरी करे बैठे टाबरा ने संभालनो मुश्किल हो जावे है और यू ही सबसे बड़ो नुकसान है वो एकल परिवार को है। तो राजस्थान री परंपरा में संयुक्त परिवार हमेशा सु समाज री रीढ़ माने गए है परंतु आपा देखा कि जो आधुनिक टेम में परिस्थितियां और काम काज रे कारण एकाकी परिवार बनबा लाग गया टावरा ने सही संस्कार देवन और परिवारों रो सुख बांटन में सर जो संयुक्त परिवार है बिकु तो कोई तोड़ ही कोनी तो बहनों आपा अपने बच्चा ने सीख देवा और एकजुट होके एक परिवार में रहा ताकि आपने कोई भी आना रो दुख संकट है बिकु सामना आपा सब मिलजुल के कर सका और अपने टावरा में भी इस चीज की इस संस्कार की और संस्कृति और अच्छी परवरिश सहबा हो सके ताकि अगली आना री पीढ़ी है बिम आपा इस संयुक्त परिवार ने बचा रख सका और ये परंपरा ना आगे ले जा सका।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ननद रो नखरो भाभी रो प्यार घर परिवार में खुशियां अपार। जी बहनों, ननद भाभी को जो रिश्तो हुआ है वो दोस्ती आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित हुआ है और होनो भी चाहिए। और दोना की आपसी परिस्थितियां न समझकर आपकी सीमा को ध्यान है वो रखनो चाहिए, जिसो की घर में आनंद और खुशनुमा माहौल है वो बने उड़ो रहे। ये रिश्ते ने मजबूत और मजबूर बनाने रे खातिर कुछ जो बातें हैं, अगर आप बाबा को ध्यान रखा तो अपना जो घर परिवार है भी में प्रेम और सहयोग है वो हमेशा बने उड़ो रहे। भाभी ननद ज्यादातर हम उम्र ही हुए है तो दोनों सहेलियां बन के अगर रहे तो उनकी परेशानियां और खुशियां है वे आपस में साझा कर सके है, बांट सके है। और ननद ने भाभी अपनी भाभी को जो स्पेस हुए भी को ध्यान रखनो चाहिए और भी साथ अच्छे स्पेस आना चाहिए ताकि बाँ के बीच कोई मन मुटाव नहीं हुए। और देखो, कई बार देखा कि जो कोई तीसरो आदमी अगर कुछ कह दे वह है भाभी के बारे में या ननद के बारे में, तो आपसी जो जो आप जिकिन चुगली बोला हाँ, तो तुलना और चुगली से हमेशा बचना चाहिए। ना तो कि दूसरे परिवार में जो भाभी है भी के साथ तुलना करनी चाहिए और ना ही भाभी ने ननद की जिकी तुलना है दूसरी ननदा से करनी चाहिए। आपकी घर की परिस्थितियाँ और घर परिवार ने देख के आपसी सहयोग के साथ ही आपको जो रिश्तों है भी ने अच्छो मजबूत बना के रखना चाहिए ताकि मधुरता और प्रेम है वो बने रहे। देखो बहनों, छुट्टियाँ आ रही है और अब बच्चों की जो छुट्टियां शुरू हुई, मैं आपा देखा कि आपा भी पीहर जावा हाँ अपने घर परिवार भाभी भाई माँ बाप से मिलन और आपने जिकी ननदा है वह भी आपने कनावे है। तो आपा अगर अपेक्षा करा हाँ कि आपनों गैड़ों को सम्मान करें, इज्जत करें, आपा ने जो आपन देख के वह खुश हो तो आपनों भी यो कर्तव्य बना है कि आपने जो ननदा आवे है तो बांक को आपा प्रेम से स्वागत करा। बच्चा टाबर बांक साथ आया है तो बांक साथ भी आपा अच्छे से पेश आवा। कई बार देखा कि जिद बहुत सारा जो बच्चा और घर का अंदर इकट्ठा हो जावे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जावे और टाबर टाबर आपस में लड़ लेवे तो मन मुटाव सो आ जावे। तो ए छुट्टियां को जो टाइम है एक महीना आपा बच्चा ने सिखावा बांके अच्छी परवरिश करा और बन जो अगर वे आपस में लड़ रहा है हो जावे टक्कर टाबरां की, तो एक जो टाबर आपस में लड़े वह तो थोड़ी देर में बिसा का बिसा और जो मायत है बांको आपसी जो मन मुटाव सो आ जावे तो वो मन मुटाव ना रखा, टाबरां ने समझावा और जो जो भी बांक आपस में जो लड़ाई झगड़ा बन सुलटारो करा के और आपस में मिलजुल के बन रहने की सलाह देवा और आपा भी साथ मिल के रहवा। और कई बार देखा हाँ कि आपा पियर जा रहे हाँ और आपने कन अगर कोई इसी चीज और आपा उपयोग में नहीं ले रहे हाँ तो बस सोचा के अपना मैं भाभी के लिए या और कोई के लिए ले चला अपना तो काम मारी होनी, तो आ चीज बिल्कुल ना रखा कि अपने लिए अगर वह उपयोगी नहीं है तो वह दूसरे के लिए उपयोगी क्या उसका। तो तोहफो अगर आप भेंट कोई चीज की दे रहा तो वह इसी देवा कि अगला के भी काम आवे। अगर आप टाबरा के लिए कुछ लेके जा रहे हाँ तो आप जो गर्मी की छुट्टियां टाबर एक रचनात्मक तरीके से बिता सके, एक लिए आप ड्रॉइंग को सामान ले जा सक या कोई स्टेशनरी को कोई सामान ले जा सक, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप बुक्स वगैरह भी बान ले जाके दे सका ताकि बान को सहयोग हो जावे, या बान कोई इसी जो स्कूल से संबंधित कोई चीज है बान दे सका, यूनिफॉर्म वगैरह आप ले जाके दे सका ताकि बान को सहयोग हो जावे और अपनी भाभियां है वह भी खुश हो जावे कि जो टाबरा के लिए चीज लेके आए हैं वह उपयोग में आने वाली चीज है। और अगर आपा यहाँ सोचा कि आपा ने ही उपहार मिला है तो देखो उपहार और भेंट है वो देनो भी चाहिए और लेनो भी चाहिए। तो हमेशा कि कभी घर अगर आपा जा रहे हाँ मौसी बन के भुआ बन के तो उपहार और भेंट है वह जरूर लेके जाना चाहिए और अपने परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो आप सब मिलजुल के ननद के रूप में भी और भाभी के रूप में भी आपसी सहयोग के साथ, मधुरता के साथ, प्रेम के साथ रहवा, ताकि जो रिश्ता है वहां में कड़वाट नहीं आवे और अपना टाबर भी अपना जो अच्छा सुसंबंध देख के, मधुरता देख के वह भी कुछ सीखे और आगे के लिए पंको जीवन है वो भी वह अच्छे से बिता सके और आपसी जो एक प्रेम है वो भी टाबरा के अंदर भी बने रहे। तो टाबरा में भी आपा कोई भेदभाव न करके आपस में मिलजुल के रहने की बन सलाह देवा, अच्छी बाता बन बतावा, अच्छी चीजा सिखावा और अपने कन जो अनुभव है वो बच्चा के साथ साझा करा, नानी नाना दादी दादा के साथ बैठ के आपस में बात करा और बांक जीवन के बारे में पूछा, ताकि अपन भी कुछ सीखने मिले और अपना जो टाबर है वह भी बुजुर्गा के पास बैठा तो अच्छे संस्कार बक अंदर आ सके और अच्छे जो बात है वह सीख सके और बांक जीवन के लिए वह उपयोगी हो सके।

बहनों, अब बात करा बचत की, मितवेता की। यानी कि अगर आपने अंदर यह आदत है कि आप 2 रुपया अपने भविष्य के लिए बचा सका, अपने टाबरा के लिए बचा के रख सका, और कोई इस जो आपातकाल परिस्थितियां अगर कोई भविष्य में आ जाए तो भी के लिए 2 रुपये की बचत है वह अपन करनी चाहिए। और आपना जिका टाबर है तो टाबरा में अगर आप जो छोटी उम्र में ही ये आदत विकसित करा तो बैंक भविष्य के लिए बहुत अच्छी मानी जावे है। और कई बार क्या है कि आप टाबरा ने जब ये बात सिखावा तो बन बतावा कि जब मैं आज अपने का जो रुपया है तो के परिस्थिति से रुपया कमाया है, कठे से शुरुआत करी ही और आज अपने का 2 रुपये है तो वह ये अनुभव और इस समय में जो मेहनत करी है बिको फल है। अपने का बहुत पैसा तो इको मतलब योग नहीं कि आप टाबरा ने खुली छूट दे देवा कि वह खर्च करे, बने पैसे की कीमत है बस समझानी पड़ेगी, अपन खुद न समझनी पड़ेगी बिक बाद ही अपा टाबरन अजीज समझा सका। हाँ, तो जो एक बचत की जिकी आदत है बा भविष्य ने सुरक्षित रखना को सबसे बड़ा उपाय है। टाबरा ने अपा गुल्लक है बा ले आके देस कहा और भी मैं 5 रुपया 10 रुपया जब भी बान आप जेब खर्च देवा तो बन बारह जाके भी पैसा खर्चने की बजाय यह बतानी चाहिए कि गुल्लक में डालो ताकि थारकन बहुत सारा पैसा हो जाए और आप कोई भी जिकी चीज है बढ़िया चीज है बा खरीद सका हाँ ताकि आपने लिए उपयोगी हुआ है। और कई बार इसी परिस्थिति आ जाए कि 2 रुपया वह काम में भी आप ले सका हाँ। तो टाबरान एक लिए आप सिखावा भी के साथ ही साथ अलग अलग कई बार के है कि टाबर जब स्कूल जावे तो आपका दोस्त या क्लास का जिका सहपाठी है बन चीज खाते हुए देखा है या कोई चीज खरीद के लाते हुए देखा है तो वह भी अलग अलग मांग है वह घर में आके करन लाग जावे। तो बच्चा की हर बात हर जिद न पूरी करनो जरूरी को नहीं हुआ है और सही भी को नहीं हुआ है। अगर माँ बाप बाकी हर इच्छा पूरी करे तो बाज की मांग है कई बार की है कि बहुत ज्यादा बढ़ जावे तो इन्हें नकारनो भी जरूरी हुआ है, मना करनो भी जरूरी हुआ है। माँ बाप और बच्चा सब के लिए फायदेमंद हुआ है, धीरे धीरे से ही सही लेकिन मन में जरूरी और गैर जरूरी चीजों के बीच अपन ने फर्क बतानो चाहिए टाबर ने। कुछ चीजा जरूरी हुआ है।

और बंक बिना काम ही नहीं चल सके है तो वह चीज लानी अनिवार्य भी हो है। तो बंक लिए आप बिल्कुल बच्चन मना भी ना करा। और कुछ चीजा ऐसी भी हुआ जगह बगैर काम चल सके है तो वह खरीदनी जरूरी को नहीं हुआ। अगर शुरू से ही यह बात अगर आप समझावा तो बच्चे के अंदर है या चीजें समझने की एक जो समझ है वह पैदा होगी। और कई सारा जो उदाहरण है वह बच्चा के साथ आप पेश कर सका हाँ। अपना बच्चा में खरीदारी की आदत डालनो भी एक बेहतर उपाय है। बच्चा जिया जिया बड़ा हुआ है बंकि छोटी छोटी खरीदारी के लिए बन आप प्रेरित करा। हो सके वह गलतियां भी करे, हो सके कि वह जोड़ घटान में भूल भी कर सके है। और कुछ ज्यादा अगर आप पैसा बने दे देवा तो वह ठगिया भी जा सके है। लेकिन आपा ने बाकी गलतियां पर बने डांटनो नहीं चाहिए। अपन सब ने गलतियां करते हुए धीरे धीरे ऐसी चीजें सीखी है तो नई नई चीज वह गलती करता जाएगा और भी चीज ने सीखता जाएगा। इसलिए खरीदारी के लिए बने हमेशा आप उत्साहित करा। इससे आपने पर एक तो वह निर्भर को नहीं रहेगा हर चीज की आवश्यकता के लिए और बम है जो वित्तीय जो निर्णय हुए वह लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। और गुल्लक की जिकी आदत है वह टावर में जरूर डालनी चाहिए। पिछली जो पीढ़ी व माँ बाप आपके बच्चा ने बचपन से ही गुल्लक की आदत डलवा देता। इससे बच्चे में बचत की आदत को विकास हो तो और यह आदत बड़े होने पर काम आती। आज का माँ बाप ने भी यो ही करना चाहिए। बच्चा में अगर आप पॉकेट मनी दे रहे हैं बन खर्च दे रहे हैं तो एक अलावा दादी नानी के पास भी जब टाबर जावे रिश्तेदारी में जावे तब भी माने जो रुपया पैसा है वह मिले तो धीरे धीरे बच्चे में या एक समझ पैदा करनी चाहिए। माने प्रेरणा देनी चाहिए कि एक कुछ हिस्सों वह गुल्लक में बचा के रखे। जब गुल्लक भर जावे और बीम से जब पैसा जमा हो जावे तो बम कुछ पैसा और मिला के अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी खातों खुला सका। और जो बच्चे का दो रुपया नाम है वह बैंक में हो जाएगा और बैंक जो खातों खुलेगा तो बीम धीरे धीरे धीरे धीरे बचत की आदत भी बच्चन पड़ जाएगी और वो आपके भविष्य के लिए दो रुपया है वह बचा भी सकेगा। जब बच्चे के नाम से कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस में कुछ रुपया आप जमा करावा हाँ तो वहाँ पर ब्याज भी मिला है और बच्चे ने ब्याज के बारे में भी समझावा और बतावा कि पैसा जमा करने के बदले बैंक या पोस्ट ऑफिस हर महीने बन ब्याज देवे है। पासबुक में दर्ज ब्याज की राशि देखकर बच्चों उत्साहित होगो और इसे में बन बात के लिए आप प्रेरित कर सका कि हर महीने कुछ राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस का आपके खाता में डाला। साथ ही बच्चे ने यह भी समझावा कि बचत है भी में अपन ब्याज मिले और अपने कंदोर पे भविष्य के लिए बचे तो बच्चन सीख है बा बिल्कुल देनी चाहिए। और एक साथ साथ बचत सिखाने के साथ ही एक साथ बेहतर इस्तेमाल की भी बात बच्चन बतानी चाहिए। बच्चन अपनी बचत से अपनी मनपसंद किताबा खरीद सका हाँ, मनपसंद और भी कोई चीज है जिसकी जरूरत की है बा खरीद सका हाँ। तो यो जो महत्व है पैसे को जो महत्व है पैसे की जो बचत है और भी बचत ने के जगह पर लगानी है भी पैसे को कया उपयोग करना है आप भी बात बच्चा ने सिखावा ताकि वह जब पैसे की बचत कर ले तो बिना वेस्ट नहीं करे और जो बचत करने की जो एक आदत विकसित हुई है तो बिना सदुपयोग करने की भी आदत है बा बच्चन अपन उत्साहित करना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि टाबर में आज की आदत है बा शुरू से ही विकसित हो जाए और आगे भविष्य के लिए भी के लिए सुरक्षित हो।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: अब बात करा गाय भैंस जो घर में रखे है तो अद बिलो जिन्हें बोले जावे कि मथने की जो प्रक्रिया है, यानी कि दही ने मत के भी कि छाछ बनाई जावे, मक्खन निकालो जावे, मठो बनायो जावे, तो बिन कहो जावे जो अद बिलोय हुए, यानी कि आधो बिलोने के बाद में जो दही हुए है, जो छाछ टाइप बन जाए, तो बस स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हुए है और स्वास्थ्य वर्धक हुए है। यो जो प्रक्रिया हुए है, इन्हें तैयार किए गए दूध या घी स्वास्थ्य के लिए अमृत माने गए है। दूध ने बिलोर मक्खन निकालने के बाद बच्चोड़ो दूध या मठो जिन छाछ खवे बिना पेट और पाचन के लिए बहुत ही बेहतरीन मानो जावे है। बिलोणो दूध और छाछ पीने का जो के फायदा हुए है, मैं आप अपनी बहना ने बतावा कि वो जो अद बिलोयो दूध हुए है, यो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। पाचन तंत्र ने मजबूत करे, स्ट्रोंग करे, ताकि जो आपा जो कुछ भी खावा हाँ वो अच्छे से पच सके। बिलोने की प्रक्रिया से तैयार दूध और छाछ में है भी में गुड बैक्टीरिया, यानी कि अच्छा जो बैक्टीरिया हुआ है जो अपने लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हुआ है, और पाचन क्रिया ने दुरुस्त करे, मजबूत करे, और गैस और कब्ज जैसी समस्या है भी से विराज दिलावे। और कई बार आपा देखा कि जो गर्मी की शुरुआत हुआ है तो जो इन्फेक्शन की जो एक गर्मी का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जावे, और पेशाब में लीवर में इन्फेक्शन की समस्या भी बढ़ जावे, और महिलाओं में खासकर अजीजा हुए है तो अद बिलोयो अगर पीवे है तो भी से शरीर की जो गर्मी है बा दूर होवे और ठंडक मिले, यानी कि भी की तासीर है बा बहुत ज़्यादा ठंडी हुआ है और बस स्ट्रोंग भी बहुत हुआ है और अपना पाचन तंत्र ने भी मजबूत रखा है। एक साथ साथ यो हल्को हुआ है, इससे अपने फेट की यानी कि जो चर्बी की मात्रा है बा कम हुआ है, जिससे वजन घटान में भी मदद मिला है। शरीर ने ठंडक देवे, एक साथ साथ ऊर्जा भी देवे। गर्मियों में इको सेवन शरीर ने डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की जो कमी हुए है भी से बचावे, और तुरंत जो एनर्जी बोले है, एनर्जी बूस्ट बोले है भी को यह काम करे है। तो आपने अगर आप गाय भैंस रखा हाँ और आप जो गर्मी है बढ़ रही है बॉडी की, तो आप यो जरूर पीवा ताकि शरीर ने जो ठंडक भी देवे और साथ ही साथ जो शरीर में जो कमी आ गई है, कमजोरी आ गई है, बिना भी ऊर्जा दे या ताकत पैदा करे शरीर के अंदर। भी के साथ साथ इम जो मौजूद लैक्टिक एसिड और विटामिन हुए है वह अपने अंदर से डिटॉक्सिफाई यानी कि स्वच्छ करे शरीर ने, जो जहरीला तत्व है बार बार निकाले शरीर का, और त्वचा स्वस्थ और चमकदार भी बने है। कई बार आप देखा कि गंदा जो डिटॉक्स हुआ है अपनी बॉडी ने अंदर से जो गंदी कर देवे, यानी कि गैस और पेट खराब रहने की जो समस्या है वह जब दूर हो तो चेहरे पर अपना आप ही निखार आ जावे और त्वचा है वह खिली खिली और चमकदार बन जावे। भी के साथ ही साथ जो कैल्शियम की कमी है बाप भी महिलाओं में और टाबरा में देखने मिले है, तो हड्डियां और दांता ने मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कैल्शियम होवे है और अन्य कई सारा पोषक तत्व भी यो प्रदान करे है। तो यो तो कोई आपा ने खरीद के भी कौन लेना पड़ा, अगर आपा बिलोण कर रहे हाँ तो भी बिलोण बिलोता समय जो बीच में जो छाछ हुआ है, मठ हुआ है, बिन आप पी जाए एक गिलास डेढ़ गिलास जितो भी भावे वो पी लेवा, ताकि आपन शरीर ने शक्ति भी मिले और पेट की जो गर्मी है वह भी दूर होवे और कमजोरी है दूर होवे, और इससे जो अपना जो शरीर है वो मजबूत होएगा, त्वचा खिली खिली रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, और एक क्रीम की जरूरत नहीं हो कि अंदर की जो एक सुंदरता है बा निखार है वो बाहर आओगे, और आपने जो पेट की समस्या, कब्ज की समस्या, गैस की जो समस्या है वह भी दूर होगी, साथ ही साथ वजन नियंत्रित भी रहेगा ताकि शरीर हल्को रहे और आपा

0: Singh delivered India's best performance on the final day by finishing fifth in the men's 110kg plus category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
4: नियमम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्ततयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चार बाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 MHz पर आकाशवाणी चूरू।
2: श्रोताओं, प्रस्तुत है आपके लिए आपकी अपना ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, ये पहला गीत हमने लिया है गुरदास मान की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म से, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिलसिला जिला चूरू से लिखते हैं संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल, कार्तिक सोनग्रा और इनका पूरा सोनग्रा परिवार। कुछ और नाम हम शामिल कर रहे हैं, हमारे श्रोता हैं रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, आप सभी लिख रहे हैं हमें हनुमानगढ़ टाउन से। ये ईमेल हमें मिला है पाकुड़ झारखंड से, लिखते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का। आप श्रोता हैं लिखते हैं हमें ये ईमेल जैन मंदिर वाली गली कुरावी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनका पूरा परिवार। ये श्रोता हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी का। आप श्रोता हैं ग्राम पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये ईमेल मिला है हमें। हमारे श्रोता हैं कॉन्फ्रेंसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। एक और ईमेल हम शामिल कर रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से लिखते हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। आप सबके पसंद को पूरा कर रहे हैं इस गीत के साथ।

शुरू मेल बॉक्स में अगला गीत हमने ले लिया है। फिल्म का नाम है सोहनी महिवाल और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं। मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जेवियम जैन और आदि जैन। और ये जो ईमेल हम शामिल कर रहे हैं, नेकी राम रिवार्ड, संतोष, ममता, कल्पेश, शैलेश रिवार्ड का लिखते हैं, गांव सेंसवास, जिला झुंझुनू से।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय

0: व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी चूरू से जारी है इस वक्त कार्यक्रम मेलबॉक्स, और जो ईमेल हमें दिन में 11 बजे से 1 बजे तक मिले उन ईमेल्स को हमने शामिल किया है। अगला गीत हम ले रहे हैं निकाह फिल्म से, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कलां झुंझुनू से लिखते हैं। महेश जानू, बहादुरवास, जिला झुंझुनू से। सुखजिंदर बुगालिया, चिड़ावा, जिला झुंझुनू से लिखते हैं। मलजीत कांटीपाल, पीदासर से लिखते हैं। और साथ ही हमारे श्रोता है नई सड़क चूरू से, राजानंद वाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी। गुदड़ी बाजार चूरू से जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल और इनके सभी साथी। दूधवा मीठा चूरू से हमारे श्रोता है राकेश कुमार। लादड़िया चूरू से अरविंद खारडिया, और ये हमारे श्रोता है निशांत फुंडे, ओम प्रकाश, मानसी, चेतन, आप सभी लिखते हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। कुछ और नाम हम शामिल कर रहे हैं इसी गीत में। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, ये हमारे श्रोता हैं। लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, आप श्रोता हैं। लिख रहे हैं ग्राम बाघा मूड़ा, कोमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी प्रकाश और यहीं से है गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, आप श्रोता हमें दिख रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, तमाम श्रोताओं की पसंद को हम पूरा कर रहे हैं निकाह फिल्म के इस गीत के साथ। और ये गीत बड़ा ही प्यारा है। गीत को सुनने के लिए, हमें ईमेल करने के लिए तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू का प्रसारण और इस वक्त जारी है आपका अपना फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स। श्रोताओं, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, वो चाहे हमारे फेसबुक पेज पर आधारित हो या हमारे जो ईमेल एड्रेस है manbhavanchuru@gmail.com, उन सभी के लिए हमारा एक ही सुझाव रहता है तमाम श्रोताओं के लिए कि जो भी समय रहता है उस समय का आप खास तौर पर ध्यान रखें। जैसे कि जो कार्यक्रम है मेलबॉक्स, उसके लिए हम आपके ईमेल्स प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे तक शामिल करते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य जो फरमाइशी कार्यक्रम है उसके लिए भी हमारा समय आप तक दिया होता है। उम्मीद है श्रोताओं आप इस वक्त कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हम आपके लिए अब प्ले कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत और इस गीत के लिए फिल्म का नाम है तकदीर। तकदीर फिल्म के इस गाने को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। आप लिख रहे हैं गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक।

कुमार और कुमारी पूजा खटक। ये ईमेल हमें मिला है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। लिख रहे हैं कि हमें मेल बॉक्स कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, आपको शुक्रिया कि आप हमें याद करके अपना ईमेल भेजते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का ईमेल भी शामिल हुआ है। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, और ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं। आप श्रोता हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से लिखते हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। अगला ईमेल हम पढ़ रहे हैं, हमें मिला है। आप लिख रहे हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप लिख रहे हैं खुर्जा यूपी से हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अंकुश अरोड़ा। और आप श्रोता हैं नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आज के कार्यक्रम का अंतिम ईमेल है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से इनके साथी हैं शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आप सबकी पसंद को पूरा कर रही हैं फिल्म तकदीर के इस गीत के साथ।

श्रोता भी सुन रही थी कार्यक्रम मेलबॉक्स। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ बाबूलाल और मेरे साथ हैं
1: बीरबल नोखवाल।
0: सभी सुनने वालों को हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।

बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है युवाणी और हमारे आज का मुख्य आकर्षण है हमारी प्रेरणा स्रोत। जी हाँ, कार्यक्रम प्रेरणा स्रोत में हम बात करते हैं उन हस्तियों की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, लोगों की भलाई के काम किए हैं और अपना नाम अपने देश का, आज जहाँ वे रहते हैं उनका नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मदर टेरेसा की। बिल्कुल, मदर टेरेसा जिन्हें हम संत टेरेसा के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा किए गए बहुत से महान कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी नवाजा गया। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने स्वेच्छा से हमारे भारत की नागरिकता ले ली और कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की और लगभग 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की और साथ ही मिशनरी ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। आगे बात करते हैं तो वे 1970 तक गरीबों और असहायों के लिए अपनी मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई और इन्हें 1971 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवन में काल में मिशनरी ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनकी मृत्यु तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें एचआईवी, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे और साथ ही सूप, रसोई और बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी इन्होंने चलाए। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्रदान की। बातें और भी होगी, सुनते हैं एक मदर से संबंधित गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है जुबानी और हमारा आज का कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है हमारी प्रेरणा स्रोत, और इसमें हमारी आज की प्रेरणा स्रोत हैं मदर टेरेसा। बाकी जानकारी की बात करें तो हमारे साथ हैं बीरबल, बताएंगे आपको।
1: मदर टेरेसा ने हमारे भारत के लिए विशेष काम किया।
0: बिल्कुल,
1: मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो रोमन कैथोलिक महिलाओं का एक धार्मिक संगठन है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और गरीबों, विशेष रूप से भारत में रहने वाले गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जरूरतमंद लोगों, विशेषकर नेत्रहीन, वृद्धों और विकलांग व्यक्तियों के लिए कई सेवा केंद्र खोले और इनके लिए विशेष काम किया।
0: बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्काब्जे, यानी अब मेसिडोनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोया जिजू था। अल्बेन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। जब ये मात्र 8 साल की थी तभी इनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। इनके जन्म के समय इनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल की थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में गुजर गए। ये एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें गाना बहुत पसंद था, और ये एक, इनकी बहन के पास गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब ये मात्र 12 साल की थी तभी इन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 साल की उम्र में इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। तत्पश्चात ये आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक और सुंदर जानकारी मदर टेरेसा के बारे में दी। वैसे मदर टेरेसा हमारे भारत में एक संत के रूप में देखी जाती है, और हर व्यक्ति में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, तो मदर टेरेसा है उनमें भी अलग कुछ 3 विशेषताएं थी। उनके बारे में अगर हम बात करें, उनके गुण सिद्धांत के अनुसार मदर टेरेसा है वो सदाचारी, निस्वार्थ और समर्पित, सुव्यवस्थित उनका जीवन था। ये गुण हैं उनको एक अलग ही रूप में प्रसारित करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बात करें तो एक बार उन्होंने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया, और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया। इन्होंने स्वयं लिखा, वह 10 सितंबर 1940 का दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतर आत्मा से आवाज उठी कि मुझे अब सब कुछ त्याग देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं दरिद्र नारायण की सेवा के कर कंगाल में अपने तन को और अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए। बातें कुछ और भी होंगी, सुनते एक गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
2: जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है युवाणी और हमारा आज का कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है हमारे प्रेरणा स्रोत, और इसमें हमारी आज की प्रेरणा स्रोत हैं मदर टेरेसा।
3: जी बाबूलाल जी, मदर टेरेसा है, उन्होंने बहुत ही शानदार काम है जो अपने जीवन में या भारत में किए, और उन्होंने मदर टेरेसा ने जो दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी भी प्रकार का जो पक्षपात है वो नहीं किया।
2: बिल्कुल,
3: उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख है वो रोटी की भूख से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
3: उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों में स्वयं सेवक भारत आई, तन मन धन से गरीबों की सेवा में यहाँ लग गई। मदर टेरेसा का कहना है कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वहीं लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा है वो लोगों पर करें, भूखों को खिलाएं, बेघर लोगों को शरण दें, दम तोड़ने वाले बेबस लोगों से प्यार सहलाएं, अपाहिजों और हर समय उनको हृदय से लगाकर उनके लिए सेवा के लिए बिल्कुल तैयार रहें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई, और यही होता है कि जो कार्य होता है उसको बड़े प्यार से बड़े लगन से, और जो गरीब पिछड़े हैं और जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो हमेशा मदर टेरेसा की तरह ही कुछ ना कुछ हमें करना ही चाहिए।
3: बिल्कुल,
2: बात करते हैं आगे। तो मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से भी नवाजा गया है। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के लिए फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशी कोतम पदवी दी, जो उसकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी थी।
3: बिल्कुल,
2: अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा 1932 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि दी गई, और इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से भी नवाजा। 19 दिसंबर 1971 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे तीसरी भारतीय नागरिक हैं जो संसार में इस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। मदर टेरेसा को हेतु नोबेल पुरस्कार की घोषणा ने जहां विश्व की पीड़ित जनता में प्रसन्नता का संचार हुआ, वहीं प्रत्येक भारतीय नागरिकों ने अपने को गौरवान्वित अनुभव किया। स्थान स्थान पर उनका भव्य स्वागत हुआ, और नॉर्वेनियन नोबेल पुरस्कार के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन सिनेस ने कलकत्ता में मदर टेरेसा को सम्मानित करते हुए सेवा के लिए ये कहा कि मदर टेरेसा से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मदर टेरेसा का भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत में दिए गए भाषण में मदर टेरेसा ने स्पष्ट कहा कि शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, इसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता है। श्रोताओं, चर्चा हम और भी करेंगे, सुनते हैं एक मदर से संबंधित, मां से संबंधित गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है युवाणी और आकाशवाणी के चूरू केंद्र से ये युवाणी का प्रसारण है और अभी हम चर्चा करते हैं समाज में बदलाव लाने वाले युवाओं की कहानी। तो इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है।
3: बिल्कुल।
2: चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के ऊपर आपने बहुत बड़ी बात कही है। और बात करें तो युवा समाज में बदलाव ला सकते हैं, और वैसे देखा जाए तो समाज में बदलाव लाने की कोई उम्र नहीं होती, और आज के युवा अपने नवाचार और दृढ़ संकल्प से अद्भुत बदलाव ला रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: और प्रेरणा के लिए हम बात करें तो बहुत सी ऐसी प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं और उससे कोई भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे होनहार युवाओं की सच्ची कहानियां जो समाज की दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम कुमारी की, जो झारखंड से ताल्लुक रखती हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाली मौसम कुमारी ने अपनी पढ़ाई की पूरी करने के बाद स्थानीय बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव के बच्चों को न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें बाल मजदूरी से निकालकर सही राह दिखाई। उनकी इस पहल से आज कई बच्चों का भविष्य संवर रहा है। इसके बाद बात करते हैं नागालैंड के लिरोथंग लोथा की, जो फुटबॉलर थे और अपने खेल के जुनून का इस्तेमाल समाज सुधार के लिए उन्होंने किया। उन्होंने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रखने के लिए एक विशेष फुटबॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने वंचित बच्चों के जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और एक नई उम्मीद जगाई।

0: अब बात करते हैं अभिनव और सुहानी की। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कई युवा कर रहे हैं और हमारे जिले के आसपास के क्षेत्रों में युवा टीमें जल संग्रहण जैसे टांका निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं और पौधरोपण के जरिए मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जो एक बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि हमारा इलाका है जो रेतीला है, इसमें पानी की कुछ कमी रहती है। वृक्षों की बात करें तो वृक्ष भी कुछ होते थे मगर इतने नहीं होते जितने हमें सोचने चाहिए या जितना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है और खासकर युवाओं को, युवा देश की और समाज की जो दशा है वो दिशा दोनों को बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल,

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अंतराल के बाद आपका फिर से युवाणी में स्वागत है। और एक युवा बहुत कुछ कर सकता है, यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, यूं अपनी जिंदगी को बेकार मत कर, बिना कोशिश के जीत का इंतजार मत कर, जोश और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जोश और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जीतने के लिए यूं हार को स्वीकार मत कर, यूं हार को स्वीकार मत कर। तो बाबूलाल जी, हम युवाओं को बदलाव के लिए अगर प्रेरित करें तो कुछ तरीके होते हैं युवाओं के बदलाव लाने के लिए, जैसे शिक्षा का प्रसार अगर वो करें तो गांव-गांव और शहर-शहर में जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर क्या है कि शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते हैं, तो उनको हम, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकते हैं, उनको मुफ्त में हम शिक्षा देकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
4: बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने। युवा जो है और पढ़े लिखे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं या कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा करें, अपने आसपास जितने भी छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं,
3: बिल्कुल
4: स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से मान लो या उनकी इच्छा नहीं, या माता पिता भेज नहीं पा रहे हैं, या उनको माहौल नहीं मिल रहा है, विद्यालय दूर है, तो कुछ ऐसी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो उनको करना चाहिए कि अपना कुछ समय उन बच्चों को दे।
3: बिल्कुल।
4: तो कहने का ये तात्पर्य की बात ये भी कही कि जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना हमारे पास ज्यादा आएगा, तो एक तो उनकी तैयारी हो जाएगी, प्लस दूसरा उनको पढ़ाने का अनुभव भी होगा, हो सकता है अपने जीवन में आगे जाके एक शिक्षक बन जाए। तो इसके बाद में दूसरी बात आप बताएं क्या क्या हो सकती है
3: समाज में युवा बदलाव लाने के लिए, जैसे पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम बहुत ही बढ़िया काम है वो कर सकते हैं, इस दिशा में
4: और
3: हम
4: इसके बारे
3: जा
4: में
3: सकते हैं,
4: बात भी करते हैं हर बार इस कार्यक्रम में, बात करते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पर्यावरण संरक्षण में हम प्लास्टिक मुक्त समाज और वृक्षारोपण के लिए अभियान चला सकते हैं।
4: बिल्कुल।
3: अभी जैसे समाज में जो अपना जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मुक्त के लिए हम हमारे समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक कर सकते हैं, उनमें प्लास्टिक को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं कि भाई हमें प्लास्टिक का जीवन में है वो उपयोग नहीं करना है,
4: या कम करना है,
3: कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक है वो उसका मतलब हमारे पर्यावरण के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है वो, और हमारे जो पशु हैं उनके लिए भी, जैसे हम प्लास्टिक है वो रोजमर्रा के जो अपने काम है, जैसे भी हम बाजार में सामान लाते हैं और लाते हैं, तो वो प्लास्टिक की थैलियों में अगर हम लाते हैं और उनमें फिर कचरा डालकर देखते हैं हम बाहर, लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, और हमारे जो पशुधन है वो उस प्लास्टिक को क्या है कि खा जाता है, तो उसे पशुओं में भी नुकसान होता है। इसी के साथ हम पर्यावरण संरक्षण में अगर आगे बात करें तो वृक्षारोपण है ना, वो करके हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पर्यावरण को अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए हमें युवाओं में वृक्षारोपण करने की जागरूकता है वो फैलानी चाहिए। पहले तो बाबूलाल जी, हम स्वयं वृक्षारोपण करेंगे तभी हम अगले को प्रेरित कर सकेंगे।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो हमें अब आगे जो मानसून का सत्र आने वाला है, अभी मानसून की जो बरसात होगी, तो उसके लिए हम उसमें वृक्षारोपण का काम है, जो पौधारोपण है वो हम ज्यादा से ज्यादा करें। और ये नहीं है कि हमें पौधारोपण करना ही पर्याप्त है।

0: साथ हम जो पौधा लगा रहे हैं तो उस पौधे को जब तक वो पेड़ नहीं बन जाए तब तक उसकी हम सुरक्षा करेंगे, उसमें पानी देंगे, उसकी पूरी ध्यान रखेंगे। बाबूलाल जी ऐसा है कि जैसे हमने नर्सरी में गए हम और नर्सरी से हमने पौधे खरीद कर हम लाए और जो ही बरसात हुई तो हमने पौधे लगा दिए और वो लगाने के बाद हम फिर मुड़कर भी उस पौधे के पास नहीं गए, उस पौधे को नहीं देखा कि पौधे किस हाल में है, वो जीवित है या नहीं है। तो अगर हम एक बार ही पौधे को लगाया उसके बाद में नहीं संभाला तो वो क्या है कि उस पौधे की हत्या के समान ही होता है।
1: बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई। और देखो हम पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। बाकी बात आपने पौधे लगाने की कही तो पौधे लगा तो कोई भी सकता है,
0: बिल्कुल,
1: मगर उसकी देखभाल करना, उसको बड़ा करना और उसको आवारा पशुओं से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है फिर भी उसके किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगे, उसकी छाया कैसी है, किस तरह वो रह रहा है, उसको कोई खाद पानी की आवश्यकता, इन सब बातों के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करें तो जरूर पौधरोपण अच्छी तरह से हो सकता है। और युवा हैं जो इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। सुनते हैं प्यारा सा गीत, उसके बाद में देखते हैं चर्चा।

सबसे पहले बताते हैं हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। शाम 6:10 पर आप सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी शाम 7:00, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्य। एक और चर्चा होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, अलावा इसके आप सुन सकते हैं कुछ लोकगीत। चर्चा होगी इसके बाद मूक प्राणियों हेतु जल प्रबंधन, बाजार व मौसम की जानकारी के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी इसमें बताए जाएंगे। रात्रि 8:00 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 9:15 पर आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

अब बताते हैं हमारे यहाँ से रिले होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। रात्रि 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इस कार्यक्रम को हम दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम खेल जगत। समाचारों का रिले हमारे केंद्र से इस प्रकार से रहेगा। 6:00 आप सुनेगा अंग्रेजी में समाचार, माफ कीजिए 6:00 आप सुनिए हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे 6:05 पर। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:20 पर आप सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर हिंदी में और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 सुनिए News@9। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सभा के अंत में यानी रात्रि 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी हम दिल्ली से ही

हम आपको एक बार पुनः बता दें, शाम 6:10 पर आप सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। 10:30 पर सुनिए हमारे केंद्र से सुगम संगीत। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।

यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का गीत। आवाजें थी ए आर रहमान, सुखविंदर सिंह और उनके साथियों की। गीत लिखा था समीर ने और संगीतकार थे ए आर रहमान। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है जागृति। गीतकार प्रदीप, संगीतकार हेमंत कुमार।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्म गीत, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। अब सुनिए हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित पहले संस्कृत में समाचार, और उसके बाद शाम 6:30 पर हिंदी में, और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। कृपया इन प्रसारणों की प्रतीक्षा करें।

0: स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वच्छोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। आग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इंडिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनम् पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह 21 सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषी यतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमंडलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमित शाह अद्य रायपुरे राज्य स्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रिया वाहनानां आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं शुभारंभं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहस्य उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन धन शोधनागाराणि

0: सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं, व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं, विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साह कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रिय रक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 वादने भविष्यति इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति प्रयासों के समर्थक रहे हैं। श्री मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल देश का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश का व्यापारिक समुदाय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले में शुरुआती तौर पर उपकरणों में संक्रमण या दवाइयों में गड़बड़ी की आशंका है। श्री खींवसर ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 23 मई तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एम्स की टीम ने भी अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल पर आमजन का भरोसा है और प्राथमिक जाँच के आधार पर शुरुआती कदम उठाए गए हैं।
3: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन।
0: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष में आज विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इस नए लोगो का लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोगो राजस्थान के जनमानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की छवियों को शामिल किया गया है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज विधानसभा के चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
4: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का

0: पता चल गया है। एजेंसी ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी कोचिंग संस्थान के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जयपुर, दिल्ली और लातूर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस महीने की 3 तारीख को हुई ये परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए आम लोगों की समस्याओं को सुना और अनेक मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई में आए सभी मामलों के निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ और पिलानी 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहे। तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हीट वेव की आशंका है।
1: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
0: आयुष मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए आज एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में तापघात, चक्कर आने, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने को कहा है। इसके साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसे पारंपरिक चीजों के सेवन की सिफारिश की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1.5 महीने की नहरबंदी के बाद आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी काम किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटों में यह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इससे सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र के हजारों किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के लिए पानी मिल सकेगा। ऐसे में अब किसान नरमा, ग्वार और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में नहरबंदी का अंतिम चरण चल रहा है। एक सप्ताह तक नहरबंदी के प्रभाव से पेयजल आवक में कमी को देखते हुए स्थानीय भूजल स्रोतों से पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के राजकीय संग्रहालयों, स्मारकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आम जन के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल

म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के लिए लगातार काम कर रही है। जैसलमेर के दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली के राजकीय बांगड़ म्यूजियम में भी आज सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विचार संगोष्ठियां रखी गई। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में इतिहास और संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी जिले की चिट्ठी में हम आप तक पहुंचाएंगे प्रशासनिक सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों से जुड़ी खबरें। चिट्ठी में बात करेंगे ग्राम रथ अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, लू और तापघात से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और जनगणना 2027 की। साथ ही होंगे और भी कई समाचार। चिट्ठी में सबसे पहले बात पीएम सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते बूंदी की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले में जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जिले में अब तक 1,134 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे रोजाना 23,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। साथ ही 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब तक 8 करोड़ 5 लाख से अधिक की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। ये योजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। चिट्ठी में अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान की। जिले भर में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की ओर से योग जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग के पीएमओ और पंच कर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा के निर्देशन में बूंदी और सथूर में हाल ही में योग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में योग सत्र रखे गए। इनमें विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। योग गुरु दीपक गुर्जर ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने वाली भारतीय पद्धति है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने रोचक अंदाज में प्रस्तुतियां देकर लोगों को योजनाओं के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। एलईडी वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही संध्या चौपाल का भी आयोजन हुआ। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। इस मौके पर स्वगणना प्रपत्र भरने के बाद जिला कलेक्टर ने लोगों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अब 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बूंदी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों से बातचीत की गई और उन्हें श्रमिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने श्रमिकों को पंजीयन प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री मानधन योजना के फायदों से भी अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिकों को श्रम

0: दोनों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारों के हनन होने पर कानूनी मदद लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। जिले के हर कोने में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए डॉक्टर अनीता यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर यादव ने जिले के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय संचालकों से अपील की है कि वे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी प्रशासन से साझा करें। उन्होंने बताया कि पांडुलिपि की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से नियुक्त सर्वेयर संबंधित स्थान पर जाकर पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। इस ब्यौरे को ज्ञान भारतम मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बूंदी में विशेष कार्यक्रम रखा गया। माय भारत केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के साथ सामंजस्य रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिसावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माय जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माय न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नॉर्वे हमेशा बातचीत और कूटनीति रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत कीनी है। श्री मोदी आज नॉर्वे रा प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोरे सागे खबरनवीसा सागे बातचीत कर रहा है। दोनों देशों री ओर जारी भेड़ा प्रेस बयान माय कही जियो के यूक्रेन और आतुनी एशिया समेत दुनिया रा न्यारा न्यारा हलका माय चाल रहा झगड़ा टंटा बीच है फौजी कार्रवाई किनी समस्या रो हल नी है।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: बातचीत रे दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हलका माय ग्रीन स्ट्रेटेजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावण माथे ही सहमति बनी। इने तेत अंतरिक्ष हलका माय मदद सारू इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी बीच एक करार माथे ही सही करी ची। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो है कि दुनिया री चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था और दिशावर माय बिक्री लगातार बढ़ रही है। वे आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव री वेबसाइट री शुरुआत रे मौके राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री गोयल कहो कि इस साल भारत रा सामान री दिशावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर रा लेवल ताई पूगी, जो लारला साल री तुलना माय करीब 5% बत्ती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कहो कि चालू माली साल सारू भारत दिशावर माय बिक्री 1 ट्रिलियन डॉलर रा लेवल ताई पुगावणो तय किनो है। श्री गोयल देश रा कारोबारी समुदाय रे साल 2047 ताई विकसित भारत बनावन रो लक्ष्य हासिल करण सारू पूरी मजबूतियों आगे बढ़वारो भरोसो जतायो।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: कोटारा जेके लोन अस्पताल में लाड़ला दिना जापा वाली लुगाई आ रही तबियत खराब है वन और मौत वे जावन रे मामला में

0: चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शुरुआती तौर इलाज रा काम माय आवन वाला साजो सामान माय संक्रमण या दवाइयां माय गड़बड़ी री शंका जताई है। श्री खींवसर आज जयपुर माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के इलाज रा काम माय आवन वाला शंका जोग साजो सामान और दवाइयां रा नमूना जांच सारू भेजी चिया है जारी रिपोर्ट 23 मई ताई आवन री आस है। वह कहो के एम्स री टीम ही अस्पताल रो दौरो करर मामला री जानकारी लीनी है और रिपोर्ट आया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला।
1: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल जो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन। इसका
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रा सिलसिला में विधानसभा रा नुवा प्रतीक चिन्ह रो विमोचन कीनो। ई मौके वे कहो के ओ प्रतीक चिन्ह राजस्थान री जनता री सोच बतावे है। राज्यपाल कहो के ई प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा खेजड़ी रा रूंखड़ा और विधानसभा भवन रा फोटो शामिल करी चिया है जो प्रदेश री संस्कृति रो दर्शाव करे है। ई मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो के आज विधानसभा रा चार ही ऐतिहासिक दरूजा रा राजस्थानी संस्कृति रे मुजब राखी जिया नुआ नाम रे पट्टियां रोई अनावरण करी चियो।
2: शौर्य द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इसका पांच द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई नीट पेपर लीक मामला में लाडला 24 घंटा में 5 ठौड़ा छापा मार और कई खास कागजात कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कीना। जांच में परीक्षाओं पहली लीक व्या केमिस्ट्री और बायोलॉजी रा पेपर लीक वेवन रा मूल स्रोत री ठापड़ की है। एजेंसी महाराष्ट्र रा लातूर एक और कोचिंग क्लास रा निदेशक ने गिरफ्तार कीनो है। ई मामला में हाल ताई जयपुर दिल्ली और लातूर समेत देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं 10 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। ध्यान जोग है कि ई महीना री 3 तारीख ने भी आ परीक्षा पेपर लीक री शंका पाछे रद्द करती री ची ही। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच मौसम विभाग 19 जिला में आज अरकाल लू बाजन सारू चेतायो है। ई बीच चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका में गर्मी रो कोप रहवेला। वे बतायो के इन दौरान सरहदी हलका और लंकाऊ उगनी हलका में कठे कठे लू बाजन री शंका है।
3: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42।
0: ई बीच आयुष मंत्रालय जोरदार गर्मी और लू रा कोप न ध्यान रखता थका हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी है। इनमाए बच्चा बुजुर्गा आस वाली लुगाइया और खुला माए काम करने वाला मजूरा ने खास तौर सावचेती रखने बाबत कही चियो है। एडवाइजरी माए चक्कर आवन, माथा माए जोरदार दर्द वेवन और बेहोशी वेवन री सूरत माए तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन माथे संपर्क करने री राय दी रिची है। ईसा गई लू बचाव सारू बराबर पानी पीवन और तावड़ा बचबारी राय दी रिची है। इसागे शरीर न ठंडो रखन सारू छाछ नारियल रोपानी नींबू रिशिकंजी तरबूज और खीरा सरीखी चीजां काम लेवन बाबती कही चियो है।

0: आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाइचियो। ई मौके प्रदेश भर रा सरकारी संग्रहालय अर स्मारक माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखीचिया। जयपुर अर अजमेर समेत न्यारी न्यारी ठोणा सैलानिया रो तिलक लगार अर फूलां री बारिश कर अर स्वागत करीचियो। ई मौके देशी परदेशी सैलानिया अर जनता ने सगला संग्रहालय अर स्मारक माए मुफ्त प्रवेश दियोचियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर रा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माए लगाई जी प्रदर्शनी ने निरखी। ई मौके वे कहो के संग्रहालय माए नुआ सुविधा मुहैया करार सैर सपाटा ने बढ़ावो दियो जा सके है। वे कहो के राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत ने बचावन और सैर सपाटा ने बढ़ावो देवन सारू लगातार काम कर रही है।
1: सभी से यही निवेदन करूंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम डे पर कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी हमारे ऐतिहासिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हमारा हेरिटेज है, इसको जाके देखें और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भी विजिट करें उन जगहों को और इनको समझें, इनको जानें। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज सबको देना चाहूंगी कि ये आज के दिन भी करें और लगातार इस चीज को करें।
0: जैसलमेर रा दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली रा सरकारी बांगड़ म्यूजियम माए सांस्कृतिक धरोहर ने बचावन रा मुद्दा माथे विचार गोष्ठियां राखी ची। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर माए वारा रहवास माथे जनसुनवाई कीनी व जनतारी समस्यावां सुन और कई परेशानियां रो मौके निपटारो करायो। ई मौके वे कहो के सरकार समाज रा हर एक पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावणो ते कीनो है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं जुड़ी नहरा माए डूढ़ महीना पाछे आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ी चियो, जो आवता 48 घंटा माए नहर रा आखरी हलका ताई पूग जावेला। इनु सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ हलका रा किसाना ने साखारी बुआई सारू पानी मिल सकेला। सिंचाई विभाग रे मुजब 1 अप्रैल नू लागू करी जी नहरबंदी रे दौरान नहर री सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियां री मरम्मत, रेगुलेटरां रा रख रखाव और दूजा जरूरी काम करी चिया। दूजकानी नागौर और डीडवाना कुचामन जिला माए नहरबंदी रो आखिरी दौर चाल रियो है, जो 1 सप्ताह ताई चालेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिशावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माए जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: लाए पड़े है जोर की अंबर उगले आग, लाए पड़े है जोर की अंबर उगले आग, दोरा धक धक तापिया पंछी छोड़िया बाग। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगले भाई बहना ने टाबरा ने बड़े बुजुर्ग ने भाई अयुब खान गौड़
1: और भाई देवा कनी सु मोकला मोकला
0: राम राम राम राम देवा भाई राम राम
1: अयुब भाई थाने भी मोकला मोकला राम राम। और मोको ने वो बेरो ये के भाई गर्मी को है
0: के नहीं
1: हां चुके नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो अबार को जो को भगत है ना बी कमाई ने की है के गर्मी मोकली पड़न लाग रही है। तो अभी मान लो गर्मी का महीना जी मान लो अपन की है के ख्यांत रखनी जरूरी है
0: बिल्कुल। तो देखो देवा भाई आज शुरुआत अपने कार्यक्रम की आपा गर्मी से करी है और इस पे बतलावण भी आपा गर्मी की करेंगा कि भाई आपा ठहरिया किसान और किसान देखो छठ बारह महीना खेत के मायने बगे है तो बेन को ख्यात है जिको सिर्फ खेत पर रहे पर आपा अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने इतालवन कहो चाहवा कि गर्मी जोर की है। पहला अपनो स्वास्थ्य फिर आपने अपनी धरती को स्वास्थ्य सुधारना है। अगर अपनो स्वास्थ्य खराब हो जाओगे तो फिर अपने धरती को स्वास्थ्य भी है जिको बिगड़ जाओगे। ई वास्ते अपने खेत के मायने ई टाइम जो भी आपा काम कर रहे हैं खरीफ की बिजाई हूं पहला तावड़ो को अपने चोखो ध्यान रखना है।
1: भाई अयु भाई क्या कर रहे हैं के सावधानी हटी दुर्घटना घटी
0: तो दुर्घटना अपने बिल्कुल भी कोनी घटानी है देवा भाई।
1: कहने को मतलब वो है कि भाई तावड़ियो तो जोर को तपई है आज भी के है के सगली ठोड़ जोर की गर्मी पड़ी है और लुआ बजन लाग रही है जोर की लू चलन लाग रही है। आ लुआ के महीने कई बार के है के अपा खेती बाड़ी करने वाला मीन कहा तो सुबह जब अपा खेत का नहीं निकला ने क्योंकि सुबह तो अपा मान लो ठंड ठंड में ही निकला तो बी टाइम एक तो अपन आ ध्यान रखनी है कि भाई अपा खेत में जावा ने बी टाइम अपने कलेव करके जानो चाहिए भाई बिना की खाए अपने घर नहीं निकलनो है। खेत में जावा जदे पानी को साधन है ने पानी की मान लो कुंजियो भर की अपने सागे ले जानो बहुत जरूरी है
0: और तावड़े ने टालनो है
1: और पांच सात टाइम भाई जाता तो देखो अपन ठंड ठंड में जावा पर पांच सात दावा ने जब अपन आ ध्यान रखनी है कि भाई आ नहीं के मान लो लालच कर लिया कई बार क्या होगा आप देखेंगे यार थोड़ी सी खाद और खिंडानी है खेत का मैंने खाद अपनी गिरेड़ी हुए इन थोड़ी सी और छिद्दी करनी है बी चक्कर में जो तावड़ो कर लिया आता टाइम जो तावड़े की चपेट में आ जाने तो फिर अयुब भाई देखो काम माड़ो जा
0: जै क्या करे ना के तब तो तावड़ियो बड़े मरुधरारी माय थाक्या हारिया जीव थाक्या हारिया जीव रखो रूख री छाव मतलब पेड़ की छाव है वो आप ने तलाशनी है तावड़िए ने ताड़नो है। अगर आपा तावड़िया ने टाल लियो बखत पा अपनो खेत को है जिको छोटो मोटो कोई काम है वो कर लियो है तो आपा है देवा भाई एकदम है जिका स्वस्थ रहूंगा। और थे कार्यक्रम में बात करिए कि पानी देखो पानी है आज गर्मी के बखत का मायने पानी की जितनी मात्रा की आपा ने जरूरत है बितो पानी है वो आपा ने जरूर पीणो है। अगर अपन गांव गोठ भी जानो पड़े देवा भाई तो गांव गोठ जानो है तो अपन दिन के दोपहर ने टाल दो या आथन के जाओ घर निकलो नाश्तो अकेले हो करके निकलो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: खानो खा के निकलो क्यों क्या बेजद भरपेट हो सी तो तावड़ी की सहन शक्ति अपने शरीर का मायने जिकी पैदा हो जैसी अपा भूखे पेट निकल गया पानी का अपना साधन को नहीं हो तो अपा निश्चित रूप से लू की चपेट में आसका और लू की चपेट में आ गया तो देवा भाई अपनो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जा वो
1: भाई। अयुब भाई देखो थे खाने की बात नहीं करी तो एक बात नहीं ध्यान में आई के आजकल की है के आपनो खानो पीनो है ने बी में ही देखो बदलाव हो गयो तो कहने को मतलब वो है के आपा ने तो वो पुरानियो खानो पीनो ही राखनो अपनो देसी क्योंकि आजकल की है के मान लियो भात भात का जगह खाने पाने में जगह बदलाव है ना नवाचार वाला बहुत की गए थोड़ो सो जो मान लियो जगह तलेदार नमकीन आऊ की है गर्मी का महीना अपन बचकी रहनो है आपने तो देसी जगी अपलो जो सिस्टम है क्योंकि आप तो देखो ठहरिया किसान मिनक और पशु तो आपने पक पक को साथी है तो पशु आपा राखा पशु राखा जद भई आपने गन दूध है मान लो दूध होसी बिन जमा से फिर दही है छा बिलोले से तो आपने की एक राबड़ी भी बनानी है और छा जकी आपने होई सी तो जी राबड़ी है बिग मायने आपा छा मिला की और वो है ने बिग मायने प्याज मान लो जो कांदो है आप लोग बारीक बारीक काट की गेर की और जी बाजरे की रोटी है बा बिग मायने चूर की और दिन के पहली सबड़का मार की वो खानो खा के निकलांगा ना यू भाई
0: वो तो, क्लियो और क्लियो देखो देवा भाई क्लियो अपना आप एक यहाँ को शब्द है मुंह भर जावे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्लियो शब्द अपना आप में यहाँ को है वो मुंह भर जावे तो क्लियो खाने के बाद में अपना पेट भी है जिको भर जावे तो अपन है जिको खान पीन को विशेष ध्यान रखना है गर्मी को वो तो अपनी रही बात अब अपा बात करा हाँ अपने मूक प्राणियों की मूक पक्षियों की तो देवा भाई अपनी जिम्मेदारी बने है अपनी जिम्मेदारी बने है के बाकी भी आपा है जी की पानी की चुग्गे की व्यवस्था है देखो आपा समाचार के मायने भी देखा अखबार में भी देख रहा एक अपने समाज के मायने या एक पहल शुरू करी गई है कि आपा तो बोल के कह देवा लेकिन वे पशु पक्षी है वे आपकी जुबान से बोल कौन पा लेकिन मानस है बिका मन की भावना है वो जरूर समझे और वे की मन की भावना जब समझोगो तो बिग मायने एक मानवता को हृदय दिल है वो जागे को और बाकी सेवा है वो पानी के रूप में दाने के रूप में है जी को और छाया के रूप में कई बार क्या है कि आपा रूख पेड़ है अपनी जरूरत के लिए काट लिया बदले में आपा क्यों लगाया को नहीं और अब अपने में जागृति आई है कभी पेड़ लगाओ पर्यावरण ने बचाओ
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पशु पक्षियों ने बचाओ ये आपने किसान की बड़ी उपलब्धि है और एक मायने आज अपना बहुत सा किसान भाई है और किसान भाइयों के सागे सागे अपना सामाजिक जी का संगठन है वे भी जुड़े है जब दो जुड़ जावे तो पर्यावरण भी अपनो है जी को साफ सुथरो रहसी क्यों रहसी के भी आपा पेड़ है लगाने की जो मुहिम शुरू कर रखी है लगानो ही पर्याप्त को नहीं बिको पालन पोषण भी है वह आपा है जी का मानवता के नाते करे लाग रहा
1: बिल्कुल जरूरी भी है और बार को जो उपगत है ओ जो को गर्मी को जो को टेम है उन्नाले को जो को टेम है वो आपने खेती बाड़ी के लिहाज में बहुत बढ़िया है क्योंकि ये टेम के महीने बाहर की है जिकी आतावड़ी तपरी है ने आ कठिन कड़े आपनों जो को खेत है ने भी आपने खेत की माटी को है वो उपचार हो रही है और आप बात नहीं करा के भी अब आगे आपने मान लियो जिकी खरीफ की फसल आनी है तो खरीफ की फसल के लिए बार के है के वो जो को बगत है ना अपना हाथ में वो के है के जी मान लो जका किसान बहन भाई ही बे सिंचित खेती नहीं करे हैं और जकी बिरानी खेती करे बे खेत देखो पूरा एकदम खाली पड़े हैं और बे अपना जका खाली खेत पड़े हैं बंक महीने बार अपन के है के जी मान लियो खेत के मायने तो शिणियों भी उग गए बुई भी उग गए आंख भी उग गए और भी कई प्रकार का बांट ही अरनो है कोई इंगूनी है बे खेतों के मायने उग गए तो बे अपन के है के सूट के रूप में बने काट की एक जगह भेड़ा कर देना चाहिए और जे आपा खेत में खाद गिरी है आपने जकी तो भी खाद ने एकदम सुई कर दिया आपा करकी सीव सीवाड़ो है जे खेत में सीव होवे बे लटकीड़ी होवे और होवे तो बे झांपड़ झुंपड़ काट दिया और जे खेत में जे आपने मान लो कोई खेलड़ी खड़ी है कोई झाड़ी खड़ी है कोई और कोई किकर या कोई पेड़ ही बाकी भी के है यू भाई जे मान लो कई छंगाई में नहीं आईड़ा होवे तो बम की अगर लकड़ी बुद बुद की या पांच पांच छह छह फुट की निचल लटक जा अब निचल लटकेड़ी हुए जब चाहे आप मान लो पहाड़ करो चाहे आप बाद में खेत में बुआई करो भी टेम की है अपन भेसे दें तो बेहड़े तो बन एकदम साफ सुथरी सुवार लिया अब एक बाद में अपन की है खेत में जी आप बार जकी गहरी जुताई जकी पहाड़ होए अपनी बन नहीं करी है तो अब अपन ज्यादा लेट नहीं करना चीज है क्योंकि अबार जकी गर्मी पड़न लग रही है ने ये गर्मी के महीने अपन बा गहरी जुताई है बा कर देनी चीजें
0: देखो गहरी जुताई करने से देवा भाई अपने ताड़वांग बहुत सारा फायदा है क्योंकि अब आंधी चलेगी तो देखो छणवा माटी उमरा में रुकेगी और उमरा में रुकेगी तो निश्चित रूप से वह कमाई ने उपजाऊपन है वो आओ गर्मिया के मौसम की गहरी जुताई से मोकड़ा फायदा है एक तो क्या है कि अपने जी की फसल ने नुकसान पहुंचाना रहा जी का कीट पतंग है वे बारह आ जावे
1: बिल्कुल
0: और बारह आ जावे तो क्यों ही तो अपना जी का मित्र पक्षी चुक जावे क्यों ही गर्मी की लाई हुए जी का वह बढ़ जावे नष्ट हो जावे
1: बिल्कुल
0: तो वह अपनी खेती बाड़ी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा गर्मिया में आपा गहरी जुताई करके अपने खेत में है जी की आने वाली फसल के लिए आपा उपजाऊ है वो बना लियो तो कार्यक्रम में बात करी के देसी गड़ेड़ी गोबर की खाद आपा ने डेरी गुन मारनी है क्योंकि अब बखत है के बिना अपने खेत का मायने ले जाकर बिना छिड़क देवा और छिड़कने के बाद में जब आप बांध लगावा तो बस सारी की सारी अपने खेत के मायने है जी का बांध के सागे बा मिल जावे और जो ही बिरखा बरसे आपियो है वो कर देवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपन की गहरी जुताई की पहाड़ की बात करा तो कोई भी कहेगा यू भाई काम हो न बिको के हुए एक भगत है वो होए और जो मान लो करने तो आप कद भी कर सका पर के है के जब आप गहरी जुताई करा भी का फायदा भी आप गिनावा के भाई बे लट ही बे मर जा क्यों लट ही बन जानवर चुग जा क्यों खरपतवार का बीज गहरी जुताई में निकले तो बन जानवर चुग जा पर भाई जानवर कद चुगे भी भगत को भी आप ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी गहरी जुताई करा तो आपने कई के है के मान लो जगह ट्रैक्टर वाला मान लो मिनख ही जगह ट्रैक्टर रखे तो आजकल तो ज्यादा की है यू भाई ट्रैक्टर ही काम हो
0: क्योंकि
1: हड़ालो तो बहुत ही कम हो गयो तो ट्रैक्टर कई बार कहते अयु भाई शाम को चलांगा 5 बजे बाद में धारे बांध करके आऊंगा
0: बिल्कुल भी
1: तो अपने पास चीज है भी पर मान लो शाम को आप उसके बैठ तक बचा क्योंकि अपने सुबह करना वो फायदा होगा कि भाई आप बात आ करा के भाई पखेरों ही जगह जीव ही अपना जगह खेती बाड़ी का मित्र जगह पक्षी ही वे जब मान लो आहार बनावे है क्या ने के आप जिका बे कीट ही बे जमीन में निकड़े लट ही बे निकड़े या खरपतवार का जिका बीज ही बे मान लो भी के सागे बारह में तो बन चुके तो वो काम किए गए पक्षी दिन के जो ही घोसलों निकलेगो सुबह उठेगो उठता ही वो भूखो हुए और आप खास बात है कि पक्षी ने जद भी देखा ना तो वो सुबह ही चुगे ज्यादातर दानो और तो आप जे पहाड़ दिन के पहले कराओने या सुबह मान लो 6 बजे शुरू कर दिया 7 बजे शुरू कर दिया आप तो भी दौरान की है कि पशु हुए जगह पक्षी बे उठेड़ा हुए और भूखा भी हुए तो भी दौरान बे की है कि मान लो जगह कीट ही और ही बे निकलेगा तो बन फटाफट बे चुक जाएगा बन जोरदार भूख लगी हुई है कोई खरपतवार का जगह बीज हो भी बे चुक जाएगा तो भी की है अपना एक फायदा हो। दूसरे फायदे की जी आप बात कराने तो भाई जी मान लो बाबा शाम को बांध लगाई तो शाम को की फिर दिन छिपतो है भाई दिन छिप जागो फिर आगे पूरी रात की ठंडी रहेगी तो बिंक का मायने की है कि जब आप उपचार की बात कराने के भाई गहरी जुताई करा जब गर्मियों उपचार हो जाए तो वो की है कि यूं ही मान लो माटी अपनी दिन में मान लो आप पहाड़ करा दी और पूरे दिन भर के लिए मान लो बा धूप में जो मान लो आज भी मान लो कितनी जोर की लू चालन लाग रही और आम बासु वाली बांध लगाई हो जो कोई भी कीड़ो लट है बे निकले रहा हूं बारे तो बे की है कि अयु भाई बे निकलता ही मान लो गर्मी की चपेट में आके चट हो जाए बे तो भी दौरान आप पार्टी करा तो आपने फायदा रहे।
0: बिल्कुल देखो देवा भाई एक बात और भी अपने ताड़वान बतावा कभी अपन जी का मित्र पक्षी है बनाना अपना दोस्त बनाना है अब दोस्त बनाने के लिए अपन क्या करना चाहिए कभी हेलो हाय हेलो आप मानस तो हाय हेलो कर ले लेकिन पक्षियां ने जो दोस्त बनाने के लिए बांध के लिए देखो अपन चुगे की व्यवस्था
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पानी की व्यवस्था और जटे भी वे घोसला बना रखे वे घोसला ने सुरक्षित रखनो भी बड़े कोई घोसलो बने तो भी झाड़ी ने बे बहुत जन आपने नहीं काटनो है
1: बिल्कुल
0: क्यों हो सके भी घोसले के मायने भी का अंडा हो भी घोसले में भी का बच्चा हो तो वो अपने से नाराज हो कि दूर भाग जाओगे इन वास्ते बनाने दोस्त बनाने के लिए पानी और दानो और बाको घोसला ने है जी का बचाना है जब पे अपना है जी का दोस्त बन जैसी
1: भाई थे बचाने की बात करी तो आप जिया मान लियो खेजड़ी की छंगाई करा भी भगत देखा के खेतों के मायने जी की खेजड़ी ही बांगे ऊपर कठे कोई खेजड़ी के ऊपर चीड़ी को आलो है कठे कोई चील को है कठे कोई कौवे को है कठे कोई कमेड़ी को है तो बान भी जब किसान खेत में छंगाई करने भी चढ़े ने जबकि आप मान लो छांगन छांगा अपनी जंटी को लूम के लिए तो भी दौरान जे बैठे आलो है भी अंडा भी हुए या कोई बच्चो भी हो तो भी डाला नहीं भाई अपनो किसान बहन भाई छांगे को नहीं छोड़ दे तो किसान तो देखो दयालु हो और जीव प्रेमी भी हो तो किसान बहन भाई आ बातों को तो जरूर ध्यान रखें ही रखें। और अभी आप मान लो गहरी जुताई की पाठ कर रहा तो एक सागे की है अपना जगह कई किसान बहन भाई बस सिंचित खेती भी करे भाई धीरे धीरे की है अपने क्षेत्र में भी सिंचित रकबो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाए क्योंकि आपनी जी की लोक कल्याणकारी जी की सरकार ही जी की आपने किसान की मान लो खेचल करने लाग रही किसान की सोचन लाग रही कि भाई किसान की मान लो बिके बहुत ज्यादा मुनाफो हुए बिकी आय दुगुनी हुए तिगुनी हुए चुगुनी हुए बिके लिए देखो बहुत सारी योजना बहुत सारा नवाचार हो रही बा में भी मान लो अब जी की सौर ऊर्जा जी सिंचाई के लिए
0: देखो ये विषय पापा थोड़ी देर है जी की बाद में बतलावन करा पहले अपने ताड़वा ने करावा मनोरंजन और देखो मनोरंजन से पहले भी बता दे अपने ताड़वा ने कभी गायिका भी है तावड़े से इंद्रदेव से अरदास करिए कि तावड़ा मंदो पड़ जा ममता सिंह को गायड़ो यो मीठो सो लोकगीत सुनो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसान भाइयों, आ संदेश पाछा आपरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। एक संदेश हूँ पहला आप है जिका ममता सिंह को गायडो मीठो सो लोक गीत सुनो, तावड़ा मंदो पड़ जा, तावड़ा धीमो पड़ जा। देखो सब नहीं है जिको तावड़ो और लू, चाहे वो मानस हो चाहे वो पशु पक्षी हो, सब ने परेशान करे, पण बखत है वो भी पढ़नो चाहे जे आदमी की जिकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पक्षिया की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है वे तावड़े ने सहने से। तो देखो बखत सारू हर चीज होनी भी चाहिए, बखत भी है कि भाई ऐसा पतो भी लाग जाए कि भाई आने वाली जिकी आप फसला है बस अपनी भूमि भी सुधार हो, गर्मी से नुकसान पहुंचाने रहा कीट है वे भी नष्ट हो, और तावड़े से के अपनी जमीन की आंधी लू चाल सी तो जिका असंख्य जीव जिका मानस ने नुकसान पहुंचा हुआ है वे भी जिका नष्ट हो। तो देखो प्रकृति अपने लिए बहुत कुछ है बा देवे, और बदले में प्रकृति सिर्फ और सिर्फ अपना गने पेड़ लगानो है वो ही मांगे, वो ही बार अपन बिरखा का मौसम है जिका जरूर है वे लगाना है, लगाना ही पर्याप्त को नहीं बाको प्रबंधन भी करनो अपनी बड़ी जिम्मेदारी हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपा बात दी अभी करिया अपा जो को गीत सुनियो संदेश सुने अब पहली अपा खेती बाड़ी की बात करा, और खेती बाड़ी के मायने भी अपा बात दी आ करा के भाई सिंचित जो को रकबो है वो भी आपना बढ़तो जा रही है धीरे धीरे। तो आपना जगह कई के एक सिंचित जो को रकबो बढ़ी अभी मैं कई किसान बहन भाई बार कई जायद का मायने सब्जियां की खेती भी कर रखी है, और कई मान लो जो की चारे की फसलां ही बेबी बोरा की ही। तो भाई बने अपा भाई बे बोरा की जगह तो ध्यान तो रखे पर आपनो भी की है कि जो चौपाल में आया और खेती गृहस्थी की बात भी अपन तेवड़ रखी तो आपनो फर्ज भी बने के आपना जगह इतुला किसान बहन भाई तो बने बतलावन के माध्यम अपन बतावा भी कि भाई बार जिकी लू जोर की चलन लग रही ने अंक महीने कठिन कटे अपा जी मान लो चूक कर दिया जब मान लो आप जायदगी आप खेती कर रहा है कि मैंने बेल वाली सब्जी मोक ली आप बारह की ये भी आबार के चिम में कई सब्जी में आप जो बैंगन भी कई किसान बेड़ में आप देखे खूब बारह की और बंगे लू में लाग भी ठीक लगे पर की है कि बगत पर पानी तो भी नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और तो जो की बेल वाली जी सब्जियां ही अरबा में जी मान लो एक तो आप बगत पर पानी दिया शाम को टेम आप सिंचाई करा तो बढ़िया रहे, और एक मोटी बात है कि जो की बार बकड़ बाजे ने और जी मान लो अंधी भी चाले कई बार और जोर की जी मान लो तावड़ी तपेड़ी हुए भी अचानक अंधी आ जा तो आपने के रेतीलो है अटे क्षेत्र और ई रेतीले क्षेत्र के मायना अंधी के सागे जकी आपनी रेतीली धूल है बा उड़ेगी बा सीधी बेल जकी आपनी बेल वाली सब्जी बेम चाहिए टिंडा हो चाहे भी मैं आपनो खीरो हो चाहे भी मैं तरिया हो चाहे भी कमाईने तरबूज हो चाहे मान लियो खरबूजा बैड़ा हो
1: लोहिया हो
2: काकड़ी हो तो बा बेलां का जगह पत्ता ही और बांक के जगह फूल आ रहे हैं बांक के ऊपर सीधी बा छणवा रेत जगी तपेड़ी ताती होड़ी पड़े ने पड़ता ही की एक बा मान लियो इतनी गर्मी का महीने वे मुरझा जा फूल भी खराब हो जुड़स जा। तो भी वास्ते की हो के आप मान लियो खेती जी करे ना अपना जगह किसान बहन भाई सब्जियां की बे की है के कोई दो बीघा में करे कोई बीघा में कर रखी है तो भी कमाई ना आप बचाओ वो खर्च का के जकी मेड़ आपनी लगाई डी हुआ ने कई किसान बहन भाई तो के मेड़ बना के भी ड्रिप गेरिया रखे है और भी ड्रिप में जड़े बूंद बूंद जकी सिंचाई है बड़े बड़े बीचों बेड़ा हुए तो भी दौरान मान लियो भी जकी डोल हुए बिक के जकी बीच में जगह हुए तो आप देखा भी हाँ कई किसान भाई जाप तो कर भी रखे है बे कर रखे हुए जगह पूड़ा हुआ जकी पानी हुए जगह ना आप कोई तो कुंचो बोले कोई
1: सरकनो
2: बोले तो बीका जगह कुंचा बे आपा की है कि बीके सारे सारे एकदम जो बे लंबा हुए बे आठ आठ दस दस फुट बजे ही तो बाकी आपा एक मान लियो जिकी अथुनी साइड हूं ज्यादातर अंधी आवे तो भी दिशा के मई ने मान लियो बे यहां थोड़ा आडा करकी और बे आपा यहां रूप की बम पर एक छाया सी कर दिया तो भी बचाव हो सी के एक तो जो मान लियो जुई भाई 12 बजे तक तो एक तो ज्यादा सूरज तपे को नहीं और बीके बाद में जुई तपे तो वो अथुनी दिशा के नहीं जा चालतो चालतो तो बी के बाद में किए गए अपन भी अतुनी साइड में भी ना करियो तो फिर वो सूरजी बिना जाता है भी जकी बेल है अपनी बाईडी बाट जकी डोल बना की बी के ऊपर छाया रहेगी तो सीधी गर्मी कोन लगे एक तो दूसरी बात आंधी भी हल्की फुल्की आवे बी के सागे जकी रेत उड़ गया बस सीधी अपनी बेल पर गुन पड़े तो भी उबा बेल भी खराब गुनी होए बी के फूल आईडा होबे भी खराब गुनी होए तो वो आपा बचाव है वो कर सका।
1: देखो देवा भाई थे कार्यक्रम में सरकरण और कुंचे की बात करी जब आपा टाबर हा तो आपने खेता कमाई ने देखो मेड कमाई ने खूब है जी का सरकरणा आया करता सीमा में खूब सरकरणा आया करता
2: बिल्कुल
1: जी हाँ बखत बदलियो बखत बदलने के साथ सरकरणा है जी का प्राय लुप्त की ओर है। और देखो अपनी धार्मिक परंपरा भी रही है कभी आपने जी को सरकनो है वो अंतिम संस्कार के मायने बहुत ही जरूरी है तो वो ढूंढनो पड़े लागो अपन आज के तो मानवता के नाते अपन सरकना है अपनी खेत ने बचानो है गर्मी से और जठे भी का गलेड़ो कोई फूस पानड़ो पड़सी तो बा एक कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में है बा अपने खेत में काम करसी भी के मायने पक्षी है आपको घोंसलो भी बनासी तो मित्र पक्षी बड़ा आपको रेठान कर लियो तो वो अपनी फसल की सुरक्षा करसी सरकनो गर्मी से अपने फसल की सुरक्षा करसी मित्र पक्षी कीटा से सुरक्षा करसी तो देखो कितना भी सरकना का फायदा है क्या बिन आपा संरक्षित है वो रखा
2: भाई अयु भाई की है के समय के सागे की इनकी बदल तो जाए भाई अब दे सरकने की जब बात करी ने तो पुराने भगत के मायने

0: आपने जीवन के मायने जो कुंचो है जो सरकंडो है जो सरकणो है इकी बहुत बड़ी उपयोगिता आई। इकी उपयोगिता आई के ओ मान लियो जी मान लियो पहली जो कुंचो ने जो आपने जी मान लियो शुरुआत जी आप करा ने तो पहलो काम तो अपन घर चाहिए और आप घर बनाता जब आप झोंपड़ो बनाता भी को ऊपर छावनी जी की भी लगाता भाई सरकंडे की लगाता आप घर में कोई खुड्डी बनाता या छान बनाता या गया के लिए कोई छप्पर बनाता तो बी के ऊपर भी की छात होती वा पूरी सरकने की होती और बी के बाद में जब खेत में आप जाता तो खेत में पहले की है के जी मान लियो यू भाई ऊंट लेगी और हल बांधने गेड़ो है और बंगे नीचे बी के पीछे मान लियो जब मान लियो बातों लेगी जब मान लियो छकियारण जाती ने जो बाजू की वो सिर के ऊपर बातों लेगी जाती भी कमाई ने खरलो तो वो भी सरकने को बनेड़ो तो नाज आपा काटता जो छालो चाहिए तो वो भी सरकने को बनेड़ो तो है और आपा जो मान लियो माचे पर जो सोता वो भी सरकने को बनेड़ो तो
1: बिल्कुल है? तो देखो देव भाई एक बात और भी होती कभी आपने अपने जिकी छान झोंपड़ो तो अपनो झोंपड़ा में तो आपा रहता और छान में अपनो पशुधन है वो रहे तो भी मैं भी देखो छोटा छोटी जिकी चिड़कली है वो आपको घोंसला बनाती वो आपको भी घोंसले के मायने परिवार बढ़ाती तो अपनी फसलों की सुरक्षा है वह जीव है जीव के रूप में कीटा के रूप में चुक्की करती तो देखो एक बहुत सा उपयोग होया करता। आज आपने प्राय टाबरा नापा 10-12 साल का टाबर नापा पूछा के झोंपड़ो के हुए शायद वो आज को टाबर है झोंपड़ो को बता कौन सके वो झोंपड़ो के हुए टापी के हुए वो आज को टाबर है वो बता कौन सके। तो आपा तो बहुत सारो कार्यक्रम के माध्यम से अपने तालवान कहता रहा के पढ़ाई करो बहुत अच्छी बात है पढ़ाई के साथ साथ अपने राजस्थान की जी की संस्कृति है खेती बाड़ी से जुड़ी है पशुपालन से जुड़ी है शादी ब्याह से जुड़ी है बनाने बिठा की और बनाने संस्कारित बनाओ कभी चाहे दिशावरा रहो पर अपनी संस्कृति ने अपने काम ने अपने सागे ले की है वो जानना जद जाके अपनी संस्कृति है बच्चे की देखो कई जगह अपनी सामाजिक संस्था है वह मुहिम भी चला रखी है के भई आपा ने अपने टाबरा ने राजस्थान की संस्कृति को ज्ञान है वो घर बिठा की आपा देवा तो आपा है जिको अपने जिकी संस्कृति ने है जिका बचावा संस्कृति के मायने अपनो खान पान है अपनो पहनावो है अपनी खेती बाड़ी है अपनो पशु पालन है अपना सामाजिक कार्यक्रम है अपनो बातचूचक ब्याह है एको पहनावो एको रहन सहन सारा का सारा संस्कारित आपा अपने दादा दादी कन बैठ की अपा अपने नाना नानी कन बैठ की अपा अपने काका काके कन बैठ की अपने ताया ताई कन बैठ की। देखो अब ताया ताई की बात आ गई तो एक अंग्रेजी को शब्द आ गयो वो फूफे ने भी अंकल बना दियो और काके ने भी अंकल बना दियो और ताऊ ने भी अंकल बना दियो तो देखो ए जिकी अंकल है अब कितो अंकल फूफो ने अंकल कहवा तो अपन तो शर्म आवे कभी फूफो जी ने अंकल कह दो अंकल तो सिर्फ और सिर्फ चाचा के लिए आए है पण आपने ए बताओ काको जी ताऊ जी फूफो जी ए अपनी राजस्थान की जिकी सभ्यता है बिकिन आपन बढ़ाओ है वो देनो है उम्मीद कर अपना इताड़ू है कई बात पे गौर करेगा आपने टाबरा ने आपके सारे बिठा की अपने राजस्थान को संस्कृति को ज्ञान है वो देवगर बातचीत तो देखो देवा भाई अपनी जारी रह जी पण मनड़ो यूं करे है के भाई तावड़े को जोर है और तावड़े को जोर देखो आपा तो कम कर कौन सका लेकिन गीत संगीत के माध्यम से वह के भी थोड़ी देर आपा भी तावड़े ने भूल जाओ आपा भी भूल जाओ और अपना इताड़ो भी भूल जाओ। सुनो यो सीमा मिश्रा और निर्मल मिश्रा को गायड़ो मीठो सो लोकगीत।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा

0: आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: तो किसान बहन भाइयों, अब अपा सुनो संदेश, और संदेश के पछे कार्यक्रम में आपको फिर स्वागत है।
2: देखो दिवा भाई, इस संदेश में पहला देखो गायिका भी है, वे तावड़ो को जिक्र कर रही के हिवड़े सुदूर मत जाए लग जावे तावड़ियो। तो अपा भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपना ही तावड़वा ने कहा के भी सुबह शाम का अपना काम है वे करना है, दोपहर में अपने घर नहीं छोड़ना, अगर मजबूरी है तो अपनो बचाव करके ही आपा घरू निकला। बचाव में सिर पर कपड़ो है वो आपने जरूर रखनो है, सागे पानी को जिको साधन है वो आपने लेके निकलो है, तो आपा है जिको अपनो आपको बचाव है वो तावड़े से जिको कर सका है।
1: भाई अयू भाई की है आज की लू बजी ने जोर की बम की है, आपनो जिको आयुष विभाग है ने वो भी देखो सलाह जारी करी है के भाई अबार जो को तावड़ो पड़न लाग रही है तो ई तावड़े के मायने मान लियो जिया दोपहरी को जो को टेम है मज की गर्मी होए ने जकी यहां मान लियो थे 10 बजे उ लेकर 4 बजे तक तो जोर की गर्मी रहे और बीक मायने आपने जे कोई काम जरूरी नहीं है ने तो देखो बिया के यहां के लुआ के मायने
2: टालनो
1: ही और जद मान लियो के जरूरी है जानो ही पड़सी तो अबार थे बताने लाग रहा के भाई सिर पर कपड़ो लेके जानो है। एक मोटी बात ध्यान रखने गया है के आजकल आपनो पहनाव है ने वो देखो अयू भाई बदल रहे है और आपा की है के जगह टाइट टाइट कपड़ा पहरे लाग गया और जगह पोलिस्टर का नाइलोन का यहाँ का जगह प्लास्टिक टाइप का कपड़ा चल रहे ने गर्मी में अपने आऊ बचनो है ए नहीं पहनना ही, अपने सुतू जो को कपड़ो है ने
2: और ढीलो
1: और थोड़ो ढीलो कपड़ो है जो मान लियो एकदम खुल्लो शरीर भी खुल्लो रहे हवा लागती रहे वो कपड़ो पहनो है। खास रूपों की है के रंगा को भी बड़ो महत्व है तो इनके महीना मान लियो गर्मी को बगत है ना बीक महीना अपन ने जो काड़ो कपड़ो है ना बी ने थोड़ो सो
2: बी ढूलनो ही है बी
1: ढूलनो ही है बी ने
2: अपन सफेद हाँ, है जिको
1: सफेद जो कपड़ो है और सुतू मोटो जो कपड़ो है क्या करे ने के मोटो पहनो और मोटो खानो है तो इतना को अपन ध्यान रखनो है। अब आगी बात पहनावेगी और इनके सागे जे मान लियो खाने की बात करा क्यों अपनो कार्यक्रम खेती गृहस्थी है, खेती के सागे गृहस्थी की बात होनी बहुत जरूरी तो गृहस्थी जद निरोगी रहेगी ना जदी खेती वाला काम आके बढ़ेगा यू भाई नहीं तो बढ़ने भी को नहीं क्योंकि निरोगता है ने जदी सगलो काम आगे चले क्यों पहलो सुख निरोगी गया
2: दूजो धन जेब में माया।
1: हाँ भाई आगला जिता भी सुखी ने बे सगला बाद में ही है भाई
2: है? पहलो
1: सुख निरोगी गया तो ई काया ने निरोगी रखने वास्ते आपने तो की है के अटे बांत बांत का मौसम ही और बंगा महीना अपन सो ज्यादा मौसम कौन सो सीधे गर्मी और सर्दी और दोनों ही अपने जो क्षेत्र का मैंने तो जोर का भाई कोई सर्दी आवे तो भाभी बहुत जोर की आवे
2: नाम आवे अपनो भारत में
1: हाँ। और गर्मी आवे ने भाभी आपने तो बहुत जोर की आवे लुहार वाली जकी दोंकणी होए ना बा जकी लो गर्म करने वाली होए बिया की जोर की देखो गर्मी आपने अटे पड़े है बढ़ती गर्मी पड़न लाग रही है तो एक महीना अपन ख्यात रखनी है। अब अपा पहनने की बात करी तो खाने में भी अपन ख्यात रखनी है, खाने में अपन मोटा मोटी अपन बात भी करी और की है आपनो जो देसी खान पान है ना यू भाई भी पूरी ध्यान करनो है। बिंगस आगे एक बात भी और है कि भाई गर्मी के महीने चाहे पशु हो और चाहे मिनक हो है जीव जगह का महीना है ना यू भाई बिन की है कि पानी सो ज्यादा चाहिए तो अपन पानी तो पीनो ही पीनो है पर बी के सागे जे अपन जगह पानी वाली जगह चीजा होए जे मान ली खरबूजो है तरबूज है जगह काकड़ी है खीरा ही टमाटर ही नींबू ही पुदीनो है इया की जकी ए चीजा ही ने ए अपन आपने खान पान में शामिल करनी क्योंकि ए एक तरह के होए के जे मान लो पानी पियो वो पानी सीधो जा रही लेकिन आंको जो को पानी पियो ने
2: वो धीरे धीरे अपने शरीर
1: वो अपने शरीर में जकी पोषक तत्वों की जकी पूर्ति करनी है ने गर्मी में वो पूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करे। और इनके सागे जे पुदीनो को बार नाम लियो पुदीनो तो अयो भाई रामबाण है गर्मी के महीने है पुदीने की अपन चटनी बनाए खास कहा पुदीने की अपन शिकंजी बना की पीस कहा और पुदीने को जो को रस है ने पुदीने के रस ने आप जो काट की मान लियो 5-4 दिन भी अगर दो दो जगह अपनी जगह चाय वाली चम्मच को नहीं होएगी वह मान लियो 1-1.5 चम्मच या मान लियो कोई मजबूत आदमी झेल जा तो 2 चम्मच तक ले और भी कमाई ने मान लियो नींबू को रस भी मिला सका आप और भी बे मिला की थोड़ा छिंदो नमक गेर की और वो पीवा तो वो अपने सेहत के लिए बहुत जरूरी।
2: देखो देवा भाई पुदीने की जब बात चल रही है तो पुदीनो हरियो भी काम को है और सुखो भी काम को है। आप रायतो बनावा 4 पत्ती पुदीने की गेर ली तो रायतो को स्वाद ही है जिको अलग अपन महसूस होगा। पुदीना का जिका बहुत सा उपयोग

0: होगे अपनी रसोई का मायने अपन देखने है जी का मिले तो गर्मिया के मौसम का मायने जी का अपने शरीर ने जी का पोषक तत्व की पूर्ति करे है वह अपना अपा रसोई का मायने गर्मिया का मौसम का मायने है जी का रखा जैसे क्या हुए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा मजबूत रहा और मस्त रहा तो आप अपनी खेती और अपनी गृहस्थी है आराम चलास का जय एक का नहीं अपनो जिको गड़बड़ा गयो स्वास्थ्य तो अपनी गृहस्थी भी परेशान और अपनी खेती बाड़ी भी में नुकसान तो अपन वो बिल्कुल भी कौन राखनो यार। अब देखो देवा भाई बहुत सी सरकार की कल्याणकारी योजना चल रही है और वे कल्याणकारी योजना गांव गांव और ढाणी ढाणी तक पहुंच रही है और पहुंचने के साथ साथ अपना इताड़ू है ये योजना को फायदो भी है खूब उठा रहे है तो क्यों ने अपना बचेड़ा जी का किसान भाई है ए योजना को फायदो उठावे और आपके खेत के मायन है जी का यो कुसुम योजना के तहत अपने सोलर है वो लगवा ले वहां तो अपा भी है देवा भाई एक मायने सरकार की भागीदारी में अपनो भी हिस्सो है वो जुड़ जावे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई अभी बात आप कर रहे हैं सिंचाई योजना पर तो जो की प्रधानमंत्री कुसुम योजना है तो भी उनके है के मान लो यूं आप मान लो सिंचाई को जो रकबो है वो आपनों बढ़ेगो और भी खेती बाड़ी का महीना आपने सिंचाई को पानी मिलेगो भी अपना जगह किसान बेण में ही जरूर देखो खुशहाल होगा और इस पर आपने काम भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल देखो आप भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है यार योजना के लिए आपने देवा भाई फायदो पूरा उठानो एक महीने 90% तक की जिकी सब्सिडी है ने बा आपने मिले लाग रही है मैं कुछ हिस्सेदारी है बा भारत सरकार की है कुछ हिस्सेदारी है बा राज्य सरकार की है यानी दोनों मिला के 90% की जिकी हिस्सेदारी है बा सरकार की है और अपना कने 10% आप अपने जेब लगा की है वो योजना को फायदो है वो उठा सका योजना का मुख्य कारण है एक महीने 10 मेगावाट तक को जिको सौर ऊर्जा संयंत्र है वो आपा है जिका लगा सका इनके सागे सागे आपा ने एम किसान है एक महीने अलोन सोलर कृषि पंप लगाने खातर 60% तो आपा ने केंद्र सरकार देवेगी और 30% है वो आपा ने राज्य सरकार देवेगी बेको बैंक लोन हो जाओगे तो एक महीना आपा ने लगभग 10% से 40% तक को खर्चो अपन अपनी जेब है वो उठानो है अब सब्सिडी के मायने अनुमानित की लागत है अक्सर अपना किसान भाई आए पूछे कभी एक मायने अनुमानित लागत है बा कितने का आवेगी तो एक मायने अलग अलग है देवा भाई अलग अलग का मायने है या एचपी पर निर्भर करे 3 HP 5 HP और 7.5 HP तो ए तीन का मायने है तो तीन में कुल लागत है जिकी 150,000 से लेकी और 450,000 तक को है जी को सारो खर्चो है वो आवे तो एक मायने की सरकार है वो अपने सागे खड़ी अनुदान के रूप में तो एक मायने आपन की भागीदारी है एमएम भी सुनिश्चित है वो आपा करा तो एक मायने आपन भुगतान है वो 40% की बात आवे तो 15,000 से 45,000 रुपया तक अपनी गोजियों अपन देना पड़ेगा बाकी सरकार अपने सागे है वो सरकार दोनों मिला के आप अपने खेत के मायने सब्सिडी है आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत आप है जी का लगा सका और इसके अलावा आप कृषि विभाग में भी जाके संपर्क कर सका इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3333 पर भी आप है जी का संपर्क कर सका तो अपना बड़ा सारा ऑप्शन बचे कभी आप नजदीक या अपने कृषि विभाग में जावा आता जाता तो रहे कृषि विशेषज्ञ सलाह भी लेता रहा तो क्यों ना आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भी सलाह ले ले वहां आयड़ा हुआ शहर सिर आयड़ा हुआ घर के काम खातर आयड़ा हुआ तो चलता ही है जिको कृषि विभाग में भी आप जाके संपर्क करके और आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जिकी जानकारी है ले सका तो ऐसे अपनों की एक सारो को सारो है जिको योजना को फायदो अपन है जिको मिले तो देवा भाई अब अपा बातचीत तो और भी करेंगा अब एक बार मनड़ो फेर करे है के गीत संगीत की ओर चला सुनावा मीठी सी लोक रचना

0: किसान भाई अभी आपने सीमा मिश्रा गाइडो मीटो सो लोकगीत सुने और देखो देवा भाई अपनो वक्त है वो लगभग है जगह समाप्ति की ओर है और इस जी का दो पहला गीत सुनाया वो देखो तावड़ो मंदो पड़ जा और हिवड़े से दूर मत जाए एम भी कटन कटे गायिका तावड़े से बचने के लिए देखो छांटा की जी की मांग करी है बा होसके इंद्रदेव गायिका की बात स्वीकार कर ले अपनी भी बात स्वीकार कर ले और अगले दिन थोड़ी गर्मी कम कर दे तो मानस है वो भाई थोड़ा सा अपना अपना आराम महसूस करे सुकून महसूस करे
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अब चलता चलता आप एक बात और अपने तारवाने के अंबर उगले आग धरती जेले ताप अंबर उगले आग धरती जेले ताप छाया ढूंढ तो मिनख फिरे पंछी करे विलाप एक सागी आज को कार्यक्रम खेती और गृहस्थी अठे तक अयूब खान गौड़
1: और भाई देवन देव सीख
0: राम

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

अभी आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज़। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे ना थे, गीतकार निदा फाजली, संगीतकार उषा खन्ना। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात, गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था आई मिलन की रात। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए सुनते हैं अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जख्म। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एम एम करीम।

अलका याग्निक को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जख्म। आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम है पतन की रखवाली। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

अभी आप सुन रहे थे वतन के रखवाले फिल्म का गीत। आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और उनके मोहम्मद अजीज़ की, उनके साथियों की। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म का नाम है विदाता। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आइए अब सुनते हैं यशुदास की आवाज़। फिल्म का नाम है टूटे खिलौने, गीतकार कैफी आज़मी, संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आप सुन रहे थे टूटे खिलौने फिल्म का गीत, आवाज थी यशुदास की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है कर्तव्य। गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब सुनेंगे पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे

0: के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है

0: इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, आवाज थी डगला राम और उनके साथियों की। आइए अब सुनते हैं अगली लोक रचना। आवाज है चंपा मेहती और उनके साथियों की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कालूराम प्रजापत और उनके साथियों को।

इस लोक रचना के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और उसके बाद 10 बजे सुनिए जयपुर से रिले कार्यक्रम खेल जगत।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112317481 और 0112317441 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कम्प्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं

0: मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, टू व्हीलर फोर व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
1: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार।
2: हाँ एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, अब मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
0: जी, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है, तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा, तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहाँ पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है, बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी, तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन

0: भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो, उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी, उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो दो या तीन बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर।

0: होगा वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी, तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी, अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी जी विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे अपनी जानकारी देंगे वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा। चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि

0: अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है, तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
0: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
2: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
2: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने की क्या तरीके है, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
1: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणन को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज़ दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे, तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
0: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
1: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
0: जी।
1: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
0: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए, तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
0: जी।
1: लेकिन आप देख सकते, बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे, जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था।

0: माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गाँव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, MP से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
4: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
4: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन DBT के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन

0: जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल वैशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: आइए कार्यक्रम का आरंभ करें इस बातचीत के साथ जो नवीन सिसोदिया ने की पैरा एथलीट जगशीर सिंह से।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जगशीर सिंह जी। आप पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इनके परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भारत के लिए अनेकों गोल्ड और सिल्वर और जाने कितने मेडल्स जो इन्होंने हासिल किए हैं, भारत को बड़े बड़े गेम्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनके अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं 2010 में, महाराणा प्रताप अवार्ड इन्होंने हासिल किया 2017 में, पैरा एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने 2010 में गोल्ड जीता था। आप कैप्टन भी रहे हैं पैरा ओलंपिक गेम्स के, आप फ्लैग बियरर रहे हैं 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक्स के, आपने पैरा नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके अंदर अभी तक आपका जो रिकॉर्ड है वो कायम है और कोई उसको तोड़ नहीं पाया है। लॉन्ग जंप में आपने 6.9 मीटर का जो जंप है वो लगाया है। वर्तमान में

0: तो लिस्ट काफी लंबी है, ये तो मैं कुछ ही बता पाया हूँ। आपने भारत का जो नाम है वो विश्व स्तर पर काफी ऊंचा किया है, हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पैरा ओलंपिक या जो पैरा एथलेटिक्स है वो क्या चीज है।
1: पैरा स्पोर्ट्स है जो एक जितने भी हमारे दिव्यांग हैंडिकैप लोग हैं उनके लिए एक तरह से अलग ओलंपिक से अलग गेम्स होते हैं, जिसके अंदर उनकी जैसे हाथ है जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, और जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका इवेंट होते हैं। जैसे जिनका हाथ नहीं है उनके उनमें हाथ वाले आते हैं, जिनका पैर नहीं है उनमें पैर वाले आते हैं, जिनमें ब्लाइंड है उनका ब्लाइंड की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक स्पोर्ट्स है, इन पैरा स्पोर्ट जब शुरू हुआ तो उनको एक अलग सा माहौल देने के लिए शुरू किया गया था, बाद में जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जहाँ ओलंपिक होते हैं वहीं पैरालंपिक होते हैं, और पहले ओलंपिक होंगे फिर पैरा शुरू होते हैं, ऐसी एशियन गेम्स है फिर पैरा एशियन गेम्स है। और आज गवर्नमेंटें भी काफ़ी हेल्प कर रही है, उनको पूरा एक समान दर्जा है, भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, सारी सरकारें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब कोई हैंडीकेप हो जाता है उसकी ट्रेजरी होती है तो उसको अपने जीवन यापन में या उसका अपने वहाँ से निकलने के लिए बहुत समय लगता है, उसको उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। और पैरा स्पोर्ट्स पैरालंपिक ने उनको एक रास्ता दिखाया है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं, आप दुनिया में बहुत अच्छा बन सकते हैं। और आज बहुत सारे पैरालंपियन हैं जो उदाहरण बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे जैसे मैंने खुद ने भी इंडिया रिकॉर्ड किया जब मैं खेला, और मेरा 1993-94 के अंदर 8-9 साल का था जब मेरा एक हैंड चला गया था
0: जी। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन सी ट्रेजेडी रही जिसके चलते आप जो हैं ये हाथ के साथ आपके जो चोट लगी वो किस प्रकार हुआ, बताइए थोड़ा।
1: मेरा पुरुषोत्तमपास फतेहगढ़ गांव है, हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ही, तो वहां से जब मैं खेत में खाना लेने जा रहा था तो 11,000 वोल्टेज जो तार थी तो उसको जब नीचे गिरी पड़ी थी, हाथ से उठाया तो मुझे पता नहीं था करंट था उसके अंदर, पूरा हाथ मेरा जल गया। जलने के बाद कुछ लोगों ने उठाया फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो 2 से 3 महीने मेरा इलाज चला, फिर हाथ मेरा काटना पड़ा। तो हाथ जाने के बाद घर पे आया तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, बहुत छोटी एज थी नहीं पता था, तो फैमिली में काफ़ी उदास रहते थे भी क्या होगा आगे जाके। धीरे धीरे स्टडी शुरू हुई, उसके बाद जब मैं प्लस टू के बाद हमारे द्रोणाचार्य कोच आरडीसी से मिला तो उन्होंने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पैरालंपिक के जो दिव्यांग बच्चे हैं वो खेलते हैं, उनका कंपटीशन होता है, वो जीतते हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। तो फर्स्ट मैं टूर्नामेंट 2006 के

0: के साथ ये हादसा हुआ और उसके बाद में आपने 2006 में एक कोच के कहने पर आप मोटिवेट हुए और आपने इनमें भाग लेना शुरू किया। बहुत ही अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ट्रेनिंग जो है वो शुरुआत कैसे की और कहाँ से की।
1: एक्चुअली शुरू में मैं पुरुषोत्तमपाद से जब घर से कॉलेज तक मैं रनिंग करके जाता था तो 10-10, 20-20 किलोमीटर रनिंग करनी, तब मेरे कोच द्रोणाचार्य आर्डी सिंह जी, उनका हॉस्टल चलता था, उसने बोला कि आप बहुत मेहनती हैं। तो उनको मैंने स्टेट के बारे में बताया, मैं स्टेट खेला था, तो उन्होंने बोला स्टेट कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, यदि आप थोड़ी मेहनत करो तो। देवेंद्र जाजड़िया जो पद्मश्री अवार्डी थे, वो भी NMPG कॉलेज में थे पहले मेरे से, उन्होंने उनका उदाहरण दिया, उनके भी एक हाथ नहीं था, उनके भी लैट लगी थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। तो मैं रात दिन तैयारी करने लगा, अपने हॉस्टल में रखा उन्होंने मुझे 6 महीने साल, और 2006 में जब मैं खेला तो उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुई, वहीं से मेरा आयरलैंड के लिए

0: सबसे बड़ी बात है कि 16 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है।
1: आपको जन्मदिन का जो तोहफा है वो गोल्ड के रूप में मिला है।
0: हाँ जी हाँ, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर के अंदर।
1: उसके बाद में आपने इस खेल को और आगे बढ़ाने के लिए और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या आपने ट्रेनिंग में कोई बदलाव किया या आप वहीं पर ट्रेनिंग करते रहे?
0: देखेंगे, किसी के अंदर यदि डेडिकेशन या कोई इच्छा शक्ति अच्छी है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर ये चीजें बहुत थी, मुझे कोई परमात्मा का आशीर्वाद था। मैंने और ज्यादा मेहनत करी आके, जब मैं ग्राउंड जाता था उससे पहले दलिया बना के जाना, अपना डाइट तैयार करके जाता था, 4-4 घंटे टिप्पों के सैंड रनिंग में ट्रेनिंग होती थी, वेट ट्रेनिंग, सीढ़ियाँ, सब ट्रेनिंग चलती थी। तो आके मैंने डाइट खा के सो जाता था, शाम को फिर ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि उससे मेरा ताइवान के लिए सिलेक्शन हुआ।

0: हम आपसे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी जगह से ट्रेनिंग ली है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आपने ट्रेनिंग ली, क्या आपने सरकारी ट्रेनिंग प्राप्त की या फिर आपने प्राइवेट कोचिंग ली, किस तरह आपने अपने खेल को और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य किया।
1: 2006 के बाद नेशनल में जब मेडल आए तो मुझे भारतीय खेल प्राधिकरण बैंगलोर से कैंप मिला, मुझे वहां मैं कैंप में रहा। फिर 2007 में मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंप में रहा साई के अंडर में दिल्ली के अंदर। 2007 के बाद बैंगलोर में मेरा कैंप लगा वहाँ कंटेरवा स्टेडियम के अंदर, वहाँ भी वार्षिकार द्वारा सारा पूरा खर्चा बहन किया जाता था। 2008 में बीजिंग पैरालंपिक गेम्स थे तो मैं काफी लंबा टाइम रहा उस टाइम। फिर मुझे पटियाला इंडिया कैंप चलता है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, वहाँ रहा। तो वहाँ पूरा डाइट का शेड्यूल है, पूरा मसाज का है, सोना बात है, स्टीम है, गवर्नमेंट का मसाज का है, पूरा रहता है और बहुत सारी फैसिलिटी है। तो उनका मुझे पूरा फायदा मिला क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से था जहाँ इतनी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर।

0: में नहीं था स्पोर्ट्स का, वहाँ सिंथेटिक ग्राउंड जो इंटरनेशनल इवेंट का होता है वहाँ मुझे वो मिला, वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका, वहाँ पूरा बॉक्स जैम्प है, जहाँ स्टडी जैम्प है, बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट थे, जिससे रात दिन मेरा 4 बजे उठने का शेड्यूल, रात का सोने का, मैं कभी फोन यूज नहीं करता था उस टाइम, ना मेरे पास फोन था। तो बीजिंग में मैंने 6.97 लॉन्ग जंप किया वहाँ ट्रेलो के अंदर, फिर पटियाला मैं कैंप में रहा काफी टाइम, फिर बीजिंग से पहले मुझे 2 महीने के लिए इन्होंने मलेशिया सालम भेज दिया गया इंडियन कैंप के लिए, वहाँ ट्रेनिंग कैंप बीजिंग आया, वहाँ मेरी काफी इंजरी थी तो अच्छा नहीं हो पाया पैरालंपिक्स में, मैं काफी उदास हो गया था। इंडिया आने के बाद मैंने बिल्कुल हौसला छोड़ दिया था, तो मैंने कहा मैं बीएड करने जाऊंगा, तो फिर देवेंद्र जाजड़िया आए थे हनुमानगढ़, वो बोले कि स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है, कुछ ही हो जाए, फिर मैं बीएड करने चला गया। कोसा बोले कोई बात नहीं, अब टाइम है अपने पास। तो 2009 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई, फिर देवेंद्र भाई साहब आए, वो बोले कि अब वर्ल्ड गेम्स आ रहे हैं 9 के अंदर, बेंगलोर खेलेंगे अपने साथ दोनों। फिर हमने वर्ल्ड गेम्स की तैयारी शुरू करी, मैंने 6.70 करके नया एशिया का उस टाइम रिकॉर्ड किया, इतनी था, तो गोल्ड जीता। फिर दोबारा मैं उस गेम के अंदर आया, फिर मुझे दिल्ली जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे राजमंडल खेल, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे कैंप मिला लंदन में, 3 महीने के लिए लंदन चले गए हम लोग। तो 10 में सबसे गोल्डन टाइम रहा मेरा, क्योंकि जुलाई के अंदर एशियन ऑल स्टार मीट थी दिल्ली के अंदर, तब मेरा गोल्ड आया। फिर अगस्त में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, डिक्लेयर हुआ, उससे बहुत हौसला मिला उस चीज से। उसी साल मैंने अगस्त में अर्जुन अवार्ड मिला, सितंबर में मैंने इंडिया रिकॉर्ड किया जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर विल पावर एक अलग ही थी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसी साल फिर नॉटिंगम थे मैनचेस्टर के, सितंबर के अंदर लास्ट में, वहां दोनों गोल्ड जीते। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स थे 3 से 14 अक्टूबर 2010 को, वहां मेरा सेमीफाइनल आउट हो गया था, मैं उसकी कमी मैंने एशियन गेम्स में पूरी करी, मेरा गोल्ड आया, सिल्वर आया। वहां भी हमारे जो इंडियन एवेंसी वाले वहां रोज आते थे, तो वो बोलते थे भी किसी का गोल्ड आया तो हम नेशनल एंथम हमें सुनने को मौका मिले, क्योंकि जिस कंट्री का गोल्ड आता है वो नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो वहां पूरी एशियन टीम में एक सिंगल गोल्ड आया था मेरा
1: जी।
0: और नेशनल एंथम बजा, उन्होंने मुझे एक वॉच गिफ्ट करी थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप की, वो आज ही मेरे पास रखी है। तो उनको वो बोले बड़ी खुशी मिली है कि हमारा नेशनल एंथम आज झंडा चढ़ा है और राष्ट्रगान बजा है, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि नहीं होते। एक आर्मी मैन जो रात दिन हमारे से भी ज्यादा एक शहीद होता है, उनको वो ड्यूटी देता देश के लिए, एक खिलाड़ी है कि बाहर अपना मेडल जीत के वो राष्ट्रगान और तिरंगा हमारा फहराता है, तो एक प्राउड मोमेंट था उस टाइम, हम बता नहीं सकते कि इतना पोडियम पे खड़ा हो कितना फील हो रहा था।
1: और एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि कुछ जो खिलाड़ी तैयारी करते हैं वो मेहनत करते रहते हैं लेकिन रेस्ट की तरफ पूरा ध्यान नहीं रखते, तो रेस्ट इसमें कितना जरूरी होता है?
0: मैंने बताया कि पहले अच्छी ट्रेनिंग, फिर अच्छा डाइट, फिर एक्टिव रेस्ट। यदि आप अच्छी डाइट खा के 2 घंटे सो लो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। हर सैटरडे को हर खिलाड़ी को मसाज की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने हमारे टिश्यू थकान होती है वो मसाज से दूर हो जाती है। मसाज के 24 घंटे के बाद हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, 24 घंटे रेस्ट देना होता बॉडी को, उसके बाद ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। और स्टीम बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, यदि हमारे पास स्टीम नहीं है तो मसाज तो हर जगह मिल जाती है, मसाज तो हम किससे करवा सकते हैं, घर पे भी बाहर भी। तो खिलाड़ी को जैसे कोई गाड़ी या सर्विस है तो वो उसको अपनी बॉडी का खुद को ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस खिलाड़ी बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं, वो अपनी इस भी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी बहुत बोलता हूँ कि मसाज बहुत जरूरी है 1 वीक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल इंसान वो भी करता रहे तो वो भी स्वस्थ रहता है
1: जी।
0: मसाज ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है
1: जी। आपने जो छोटी छोटी बारीकियां बताई है, मैं ये चाहूंगा जो छात्र अभी या जो खिलाड़ी भी तैयारियां कर रहे हैं वो इन बातों को सीखें और अपनी तैयारी को और ज्यादा निपुण बनाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो खेल है जंप का, जो है लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप आपने बताया, ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या विशेष तैयारी आप करते हैं?
0: लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की जरूरत नहीं होती है, और 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 12 वो खिलाड़ी करते हैं। इसके अंदर वेट ट्रेनिंग मेन रहती है, जिम का रहता है, जैसे हाफ स्कर्ट है, बॉक्स जंप है, हर्डल्स है इसके अंदर, और ज्यादा टाइम जो पिच के अंदर बीतता है, जो लॉन्ग जंप पिच बनी होती है उसमें ब्रॉड जंप हो गए, बॉक्स जंप हो गए, उसके ऊपर हर्डल रख के ज्यादा उसी पे है, सीढ़ियां है, 1 लेग से जंप है, बाउंडिंग है, होपिंग है इसके अंदर जो करते हैं, मतलब जंपिंग छोटी छोटी एक्सरसाइजें ज्यादा होती है, मतलब पावर के लिए और स्पीड के लिए की जाती है इसमें, इंड्योरेंस का इसमें थोड़ा कम रहता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं 1500 उनके लिए ज्यादा इंड्योरेंस का मैटर रहता है, शॉर्ट कम रहता है, इसमें जंपिंग वाली जितनी एक्सरसाइजें हैं ज्यादा वो ऐड करते हैं हम लोग।
1: जगशीर सिंह जी, हम आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि यदि कोई खिलाड़ी खेल को ही अपना करियर के रूप में चुनना चाहे तो उसके लिए क्या संभावनाएं होती है?
0: खेल में या चाहे सामान्य खिलाड़ी है, चाहे पैरालंपिक खिलाड़ी है, जितने भी हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के या राजस्थान के दिव्यांग खिलाड़ी, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि पहले जैसा नहीं है आज, स्पोर्ट्स का बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। हनुमानगढ़ में पहली बार सिंथेटिक ग्राउंड और बजट में अनाउंसमेंट किया राजस्थान सरकार ने। बड़ी खुशखबरी है कि 8 करोड़ का जहां हनुमानगढ़ जंक्शन में

0: सटी ग्राउंड बनेगा, बहुत बड़ी बात है। अब राजस्थान सरकार खेल निदेशालय बना रही है, और दो दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा तो स्पोर्ट्स का एक अलग ही बनेगा बोर्ड, तो उसमें भी खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। हमारा राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी स्टेट में गोल्ड जीता है उसको 1,00,000 का केस प्राइज दिया जाता है
1: जी,
0: और सिल्वर जीता 50,000 रुपया और ब्रॉन्ज मेडल जीता 30,000 रुपया। ऐसा ही नेशनल में है, नेशनल में यदि गोल्ड जीता है 2,50,000 और यदि वो सिल्वर जीतता है तो 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपया ब्रॉन्ज मेडल भी है। खिलाड़ियों को समय समय पर ये राशि मिलती रहती है, और यदि क्योंकि डाइट का मैटर रहता है, खिलाड़ी को डाइट पैसा मिलेगा तो डाइट खाएगा खिलाड़ी
1: जी, बिल्कुल
0: उसका है। गवर्नमेंट अब पहले नहीं था, अब देखो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है खिलाड़ी, उसको डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न में नौकरी है, कुछ नहीं करना, उसको एक फार्म भरना है और 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है। और उसके
1: आपके
0: अंदर
1: कहने का मतलब अगर कोई खिलाड़ी नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज भी जीत जाता है तो उसको डायरेक्ट नौकरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है।
0: बिल्कुल सर, मेरे साथ बहुत सारे खिलाड़ी है जूनियर है जो नेशनल लेवल पे खेले हैं और मेडल आया उनका लगे हुए हैं, बालाराम है, संतोष है, बहुत सारे रजनी है, जे सारे नेशनल मेडलिस्ट जिनका नाम लिए मैंने जो हनुमानगढ़ के, और जो सारे सरकारी नौकरी लगे हुए आईएलडीएस की पोस्ट पे आज, और 56 डिपार्टमेंट दिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, और 56 डिपार्टमेंट में कोई भी इनकी इच्छा के अनुसार जो दिव्यांग खिलाड़ी उनको पोस्टिंग दी जाती है, वो उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। वो इतनी हेल्प इतनी सरकारें कर रही है, तो मैं कहूँगा भी आने वाले समय के अंदर और ज्यादा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, और जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो हौसला बिल्कुल भी नहीं हारे, वो ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा आगे बढ़ेंगे।
1: जी जगशीर जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी बातें बताई। हम चाहेंगे कि आपकी बातें सुनकर जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ज्यादा फाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे, और भारत के लिए कोई और जो मेडल है वो हासिल करेंगे। आप भी इस खेल से जुड़े रहें और लोगों को इस खेल की अच्छी जानकारी दें और भारत का जो नाम है इसी तरह रोशन करते रहें। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: दोस्तों, ये थे पैरा एथलीट जगशीर सिंह, आपसे भेंट कर रहे थे नवीन सिसोदिया। आइए अब सुने जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से आप ही की चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, खेल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। खेल हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे व्यक्तित्व को भी दिशा देता है। यदि कोई व्यक्ति खेल से जुड़ा है तो वो अपने जीवन में निश्चित रूप से अनुशासन का पालन करता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर वो ध्यान देता है, और खेल खेलने से ही खेल भावना का निर्माण होता है और आपके व्यक्तित्व को जो है खेल निखार देता है। इन्हीं खेलों में से एक खेल है जूडो। जूडो खेल के बारे में बात करने के लिए हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शेर सिंह को। आप 5th डैन ब्लैक बेल्ट हैं जूडो में, कॉमनवेल्थ में मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2018 में। ब्रांड एम्बेसडर आप रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, स्वीप आइकॉन जिसको कहते हैं। इंटरनेशनल जूडो के अंदर इन्होंने कई सारे जो शोध पेपर है वो भी इन्होंने छपवाए हैं। 1995 से लेके आज तक ये स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में जूडो कोच के पद पर कार्यरत हैं, और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से जहां भी जूडो से संबंधित कमेटियां अगर जाती है, पैनल्स जाते हैं, उनमें ये सदस्य के रूप में जरूर पहुंचते हैं और ए ग्रेड के इंटरनेशनल रेफरी हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शेर सिंह, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: कभी बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर शेर सिंह। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे जूडो खेल क्या है, कहाँ से आया है?
3: जूडो खेल एक जापान का खेल है जी। सबसे पहले डॉक्टर जिगारो कानो जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने 1860 में एक जुजुत्सु जो मार्शल आर्ट थी उसमें उसको अच्छी बातें लॉकिंग और चोकिंग को रखकर उसको रख लिया और दूसरी चीजें छोड़ दी। जूडो एक जबरदस्त गेम है, बढ़िया टेक्निक थी उनको रखा और दूसरों को उनको रखा, जिससे एक बहुत अच्छा गेम इन्होंने तैयार कर दिया
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जूडो कब शुरू किया, कब आपका लगाव इससे शुरू हुआ?
3: सर मैं 87 में ही स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारे गुरुजी राजेंद्र सिंह बिश्नोई जो साई कोच थे गंगाधर, उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने वहाँ जूडो मेरे गंगा सिंह स्टेडियम में सिखाना शुरू किया।
1: आपके मन में कैसे आई कि मेरे को सीखना चाहिए?
3: मैंने कई बार टीवी में देखा तो मुझे ऐसा लगा भी जूडो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहता था, इससे यदि मैं सेल्फ डिफेंस करूँगा तो ये मुझे अच्छा रहेगा, तो मैं हालांकि बेसिकली मैं रेसलिंग से था और कबड्डी

0: रेसलिंग खेलता था, लेकिन एक ऐसा टर्न आया जो साई के चीफ कोच डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिश्नोई थे वो, और देवेंद्र सिंह जी, इन्होंने जूडो के बारे में मुझे बताया, फिर मैं इनसे सीखा और 87 से मैं जूडो खेल के 88 90 91 में मैं राष्ट्रीय और यूनिवर्सिटी ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला। उसके बाद मुझे एक ललक सी लगी, मैं जूडो ही में परमंगत होना है, तो इसके बाद लगातार आज तक जूडो खिला रहा हूँ और खेलता हूँ।
1: आप 95 में आपने राजस्थान सरकार में एक फिजिकल टीचर के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो उस वक्त भी आपने बच्चों को जूडो सिखाना शुरू किया?
0: तो मैंने 93 में NIS पटियाला में जाकर अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया, जिसे हमारे चीफ को जे जी शर्मा जी और टोनी ली जो इंडिया कोच थे वो, उनसे मैंने सीखा। और 94 में मैं डिप्लोमा लेके घर आया, फिर उसी दौरान राजस्थान सरकार ने सर्विस के लिए कुछ पोस्टें निकाल रही थी, और मेरा 94 में मैंने फॉर्म भरा और फरवरी 95 में मेरी पोस्टिंग वहीं हो स्कूल में होगी, तो तब से लेकर आज तक उसी स्कूल में हूँ और वहीं सेवा कर रहा हूँ।
1: क्या बात है। उसके बाद में जैसे आपने जूडो की बात की, तो जूडो में आप कब राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो तो राजस्थान सरकार में हुई, फिर आप कोच के रूप में किस तरह उभर कर आए?
0: सर इसमें क्या, राज्य सरकार तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में ही मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो जितने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाती हैं ये उनके तत्वावधान में होता है, तो मैं उसके बाद 95 के बाद मैंने NDIU नेशनल डिप्लोमा इन ऑफिशिएटिंग उसके तहत मैं ए ग्रेड में पास हुआ। 96 में सबसे पहले मैं इम्फाल में गया, और इम्फाल में गया और वहाँ मैंने रेफरशिप स्टार्ट की। उसके बाद मैंने टीमें जाती हैं ओपन के लिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, स्कूल के लिए भी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो अलग से एक भारत सरकार खेल मंत्रालय चलाता है, तो उसमें भी मैं राज्य सरकार की ओर से राजस्थान एसोसिएशन की ओर से मैं कोच के रूप में प्रतिनियुक्त होकर जाता रहा, जिससे मैं मेरा आगे जुड़ाव और बढ़ता गया।
1: जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जैसे हम सुनते थे जूडो खेल के रूप में तो है ही, लेकिन इसको आत्मरक्षा के रूप में ज्यादा देखा जाता है, तो जूडो और ताइक्वांडो जो है इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है?
0: सर जूडो सबसे पुरानी जो जूडो कराटे थी 1972 के बाद जूडो कराटे अलग कर दी, ताइक्वांडो कुंग फू थांग था ये इसकी एक मार्शल आर्ट की वेराइटी है, ठीक है बहुत बढ़िया ताइक्वांडो भी, लेकिन उसमें पंचिंग है किकिंग है, लेकिन जूडो एक बहुत ही शालीनता गेम है, ऐसे एक गेम है, तो जूडो के खेलने से भी लड़कियों के लिए आजकल इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे क्या कोई भी शोधे इनको घेर लें उसको ये एक कुछ ही पल में टेक्निक सीख कर तो उनको उससे बचा जा सकता है, इसलिए जूडो एक सेल्फ डिफेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है, जिसमें तकरीबन जो टेक्निक है वो जूडो की ही इसमें यूज होती है।
1: जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जूडो खेलते वक्त क्या चोट लगने की संभावना भी रहती है?
0: नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है देखने वाले को, जूडो खेलने से चोट नहीं लगती, क्योंकि जब हम बच्चा 10-11 साल से हम खिलाते हैं तो उसको गिरने की पहले ही हम ऐसी फॉलिंग सिखाते हैं जिससे क्या वो बच्चा परिपक्व हो जाता है, और उसकी साइड लैंडिंग ऐसे करवाती हैं कि यदि वो हाथ पे गिरेगा तो उसके सारा हाथ जो उसका शॉक ऑब्जर्व कर लेता हाथ, तो हम उसके गिरने की टेक्निक ही ऐसी उनको सिखा देते हैं जिससे उनको चोट नहीं लगती। और जूडो में कोई चोट नहीं लगती, हाँ जूडो वाला चोट मार सकता है, उसको चोक कर सकता है, उसको लॉक करता है, लॉकिंग की बहुत टेक्निक है, चोकिंग 10-12 सेकंड के लिए वो चोक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद अपने कुछ भी कर सकते।
1: हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो कौन सी उम्र से वो शुरू कर सकता है?
0: सबसे पहले हम 9-10 साल का बच्चे को लेते हैं, उसको सब हम जिमनास्टिक की सारी एक्सरसाइज करते हैं जिससे क्या वो बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी हो जी। 10-11 साल से हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा को वहाँ वेट ट्रेनिंग भी होती है सबको, लेकिन छोटा बच्चा ओवरलोड हो जाता है, हम उसको वेट ट्रेनिंग नहीं देते, धीरे धीरे धीरे उसको टेक्निक सिखाते हैं, उससे क्या वो जैसे जैसे बच्चों के साथ सीखता है तो 2-3 सालों में वो सारी एक्सरसाइज करने लग जाता
1: है। जैसे आपने बताया कि अगर 9-10 साल का बच्चा आपके पास आए तो आप सबसे पहले उसको जिमनास्टिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें जो आप उनको सिखाते हैं, और किस तरह से आप उसको 9-10 साल के बच्चे को ट्रेन करते हैं, आप विस्तार से बताइए।
0: सर सबसे पहले हम बच्चा जब नया आता है उसको पहले 1-2 दिन क्लास लगाते हैं, ऐसे बच्चा उसको हम मोटिवेशन करते हैं भी तू ऐसे बनेगा तो अच्छा होगा, नेशनल इंटरनेशनल पर तेरा नाम चलेगा, तो बच्चा क्या सबसे पहले रोलिंग स्टार्टिंग फ्रंट रोल और बैक रोल, इसमें काफ़ी प्रक्रिया होती है क्योंकि कई बच्चे आते हैं फ्रंट रोल करते हैं या बैक रोल, उनका नेक दर्द या पेट की जो ये ओब्लिक मसल होते हैं ये दर्द करने लग जाते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे धीरे उसको हम लोड देते हैं, उसके बाद वो केमी है जो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, वो कैसे गिरना है, जैसे हिप कैसे लैंडिंग करेगी और जो अपनी टांगे हैं उसका क्या एंगल होगा और जो अपना ठोड़ी है वो कहाँ पीछे सिर कितना उठाना, ये उसको हम बारीकियों से उसको सिखाते हैं। तो उसे जैसे वो नीचे बैठता है पहले उसे हिप लगती है, फिर वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने पर टांगे उसके 45 डिग्री एंगल से 90 तक जाते बीच में रखते हैं और सिर पीछे उठाता है, ऐसे गिरता गिरता वो जैसे सीख जाता है तो वो उसमें हम उसको फिर उसको टेक्निक भी, जैसे पहले शोल्डर थ्रो देना है उसको, फिर कमर के हाथ में हिप थ्रो देने, ये धीरे धीरे सिखाते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है क्योंकि जब जब तक आदमी खेलता तो सीखता ही रहता है
1: जी। भारत की अगर हम बात करें जूडो के अंदर तो आप क्या स्थिति देखते हैं खेल के दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि ये खेल ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में और अन्य भी जो इंटरनेशनल स्तर के जो चैंपियनशिप्स होती हैं वहाँ पर ये अधिसूचित है, तो भारत की इसमें क्या स्थिति है?
0: सर भारत में आजकल भारत सरकार खेलों के बारे में बहुत ही अच्छा भी रिस्पांस दे रही है, भी बड़ी बड़ी अकेडमी खोली हुई हैं, जैसे सबसे पहले GSW में जो औद्योगिक घराना है जिंदल स्टील उन्होंने खोली हुई है, उसके बाद भोपाल साई भारतीय खेल प्राधिकरण ने बहुत बड़ी एक अकेडमी खोली है, इम्फाल में
1: जी
0: बहुत बड़ी अकेडमी खोली है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है
1: जी।
0: तो उसके बाद वहाँ पर वो बहुत अच्छी डाइट और बहुत ही अच्छे कोचेज, जैसे मैं बताऊं JSW में फॉरेनर कोच हैं और अहमदाबाद में संस्कार धाम है एक जगह, वहां पर भी फॉरेन कोच जॉर्जिया के कोच रख रखे हैं। इसी प्रकार
1: तो ये जो, सभी जो आपने बताई ये संस्थाएं ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है?
0: बिल्कुल, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के ही खेल मंत्रालय के नीचे ही आती है
1: ये सारी।
0: और उनमें बड़े 10-10 कोच और बड़े हाई परफॉर्मेंस कोच रख रखे हैं और फॉरेन और जो औद्योगिक घराने हैं JSW है इन्हों ये भी फॉरेन कोच रख रखे हैं जो बड़े ओलंपिक मेडल हैं, भारत के खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं और तैयार करते हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
1: कुछ हम खिलाड़ियों का नाम जानना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अच्छा कर रहे हैं?
0: हमारे अभी लेंथोई है, अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आई है, हमारे एक लड़का हर्ष है वो, और अवतार सिंह अभी ओलंपिक पिछला खेल के आया था, ओलंपिक खेल के वो अच्छा है। तो लड़के बहुत है सर, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है जी, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। कोचिंग के लिए जॉर्जिया में सेंटर बनाया है, वहाँ जाके भी प्रैक्टिस करती हैं और अभी जापान भी JSW की टीम जापान जा रही है, वो भी अभी दूसरी बार जा रही है, वहाँ भी 10-10, 15-15, 20-20 दिन की ट्रेनिंग कैंप लगे। ओलंपिक से पहले भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है जो अपना ओलंपिक इंडिया में हो रहा है तो उसमें भारत ओलंपिक में खेले और मेडल जीते।
1: बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि भारत गोल्ड मेडल तक लेकर आए। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी इस खेल से जुड़ा हुआ है उसको अपनी फिटनेस और रूटीन में क्या विशेष चीजें ध्यान रखनी चाहिए?
0: अलग अलग सर, आजकल तो बड़ी हाईटेक फिटनेस है सर
1: जी,
0: बड़े बड़े जिम है, लेकिन आम आदमी के लिए या आम खिलाड़ी के लिए हम बच्चों को रनिंग देते हैं, रनिंग के साथ साथ वो उसको एक्सरसाइज ऐसी है वो फिटनेस के लिए जंपिंग जंपिंग ये बाइसेप ट्राइप्स के लिए पुशअप पुलअप ये देते हैं, रनिंग और जिम के लिए ट्रेड मिले हैं आजकल, तो फिटनेस के लिए आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: डाइट की अगर हम बात करें तो
0: डाइट सर आजकल जैसे बड़े बड़े सेंटर हैं उनके लिए तो डॉक्टर हैं, वो कितना आप मिनरल लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, वो सब उसके अनुसार चलता है
1: जी।
0: जो हमारे सेंटर है जो जैसे चलते हैं गंगानगर कानपुर जयपुर, इसमें जो हमारे कोचिज है वो डाइट के लिए आजकल प्रोटीन का बड़ा रिवाज चलता है, वो लेते हैं लड़के प्रोटीन
1: जी,
0: सप्लीमेंट का बहुत रिवाज वो आजकल बना देते हैं, अभी इतना आजकल आ जाता है, लेकिन डर ये लगता है कि उस प्रोटीन में गलत ना हो
1: जी। बिल्कुल, उसकी शुद्धता बहुत
0: शुद्धता बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर शेर सिंह, हम आपसे अब आखिर में यही जानना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी जूडो में जाना चाहते हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं या सिर्फ आत्मरक्षा के रूप में भी इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरा यही संदेश है कि बच्चे लड़के या लड़कियां जूडो जरूर खेलें, जिससे क्या सेल्फ डिफेंस में और वो फिटनेस में वो जूडो में खिलाड़ी ना बने भले ही, लेकिन सेल्फ डिफेंस खेलें जिससे आत्म रक्षा जरूर करें
1: जी।
0: और हमारे मैं ये थोड़ी ये भी बता दूं, हमारे सेंटर के 5-6 लड़के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।
1: बिल्कुल
0: ठीक। बलविंदर सिंह ग्लासगो में अभी खेल के आया कॉमनवेल्थ और जूनियर वर्ल्ड खेल के आया। मनप्रीत है, ध्यान सिंह अभी वर्ल्ड पुलिस कनाडा में अभी गया था ब्रम्पटन में, वहां पर मेडल गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है। और अभी लड़का एक सिलेक्ट हुआ है मेरे साथ जा रहा ताशकंद के लिए। तो हमारे 3-4 लड़के और गगनदीप कौर एक लड़की दक्षिण कोरिया में गई हुई थी, तो हमारे लड़के गंगानगर जिले के वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर नाम रोशन कर।
1: गर्व की बात है हमारे लिए। डॉक्टर शेर सिंह आप हमारे स्टूडियो में पधारे और खेल से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों ये था खेल जगत का आज का अंक, जिसमें आपने दो भेंट वार्ताएं सुनी, एक थी पैरा एथलीट जगशीर सिंह से और दूसरी डॉक्टर शेर सिंह जूडो कोच से नवीन सिसोदिया की बातचीत। खेल जगत के लिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति, आलेख और वाचन रोहिता शर्मा का।

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार चंदन दास।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे चंदन दास। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, समाचार पहले हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।